सुनो शारदा 90.8 FM। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए, लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं डॉक्टर प्रीति सिंह। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं उस शक्ति के बारे में जो बिना किसी दवा के और बिना ही किसी इलाज के एक दर्शन के द्वारा हमारे मन को गहराई से बदल सकती है, जिसको कहा जाता है ध्यान, जिसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में, सोशल मीडिया के दबाव में, पढ़ाई और नौकरी की चिंताएं, इन सब के बीच में मन को शांति कहाँ से मिले? क्या कुछ ही मिनट रोज ध्यान करके हम सच में ज्यादा शांत, सकारात्मक और संतुलित हो सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन से जुड़े हुए एक साधक जो भक्ति योग और मंत्र ध्यान का अभ्यास करते हैं। ये सिर्फ एक साधक ही नहीं है, ये एक पेशे से एक इंजीनियर है और इस्कॉन भक्ति शास्त्री के नाम से इनको जाना जाता है और जो कि TTC सर्टिफाइड भगवत गीता ट्रेनर भी हैं, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़े हुए हैं। इन्होंने 13 साल वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, अलग अलग विभागों में, R&D डिपार्टमेंट्स में इन्होंने IT कंपनीज में काम किया है और पिछले 10 साल से इन्होंने वैल्यू बेस्ड सेशन और वर्कशॉप्स ली हैं। देश और विदेशों में इन्होंने यात्राएं की हैं और न्यूयॉर्क, USA, लंदन, कैलिफोर्निया, चाइना, ये कुछ ऐसे नाम मैं बता रही हूँ, ऐसे स्थान में बता रही हूँ जहाँ पे जाके इन्होंने भगवत गीता के प्रसार और प्रचार में अपना योगदान दिया है। बल्कि इसके अलावा ये बहुत सारे एकेडमिक कोर्सेज भी जो हैं ये डिलीवर करते हैं, जिसमें भगवत गीता, इमोशनल इंटेलिजेंस और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे इन्होंने बहुत सारी वर्कशॉप्स लगाई हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो आयोजित किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है हमारे बीच में, जीव गोपाल दास जी, और जो हमें बताएंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र, जप माला और सरल साधना के जरिए कोई भी साधारण व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिकता, एकाग्रता और आनंद कैसे ला सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का सफर ध्यान और भक्ति के रंगों के साथ में। जीव गोपाल दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनो शारदा में।
1: धन्यवाद मैम, आपके इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत अच्छा मंच है जो कि आप इतने सालों से बहुत सुंदर रूप से लेके चल रहे हैं। रियली थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इनविटेशन जो है एक्सेप्ट करने के लिए। और मैं खुद बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, उत्सुक हूँ ये जानने के लिए, क्योंकि आप पेशे से एक इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग से आप कैसे भक्ति मार्ग में आप रमे, कैसे इस मार्ग पे आए और कैसे इस्कॉन का एक हिस्सा बन के आप गीता के प्रचार प्रसार में अपने आप को शामिल करने के बारे में सोचा?
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मैंने 13 साल इंडस्ट्री में जॉब किया, पूरी दुनिया में जाके आया, लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने हर जगह देखी और वो थी हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो खुश नहीं है। मेरा सफर शुरू हुआ उस खुशी के पीछे भागने की। पेशे में तो मैं भागता रहा और अपने आप को एंजॉय किया, लेकिन जब उस खुशी की दौड़ में भागा तो मुझे एहसास हुआ कि पेशे से पूरी बात नहीं बनेगी, थोड़ी सी कमी है। उसको पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है, जब हम कोई इच्छा करते हैं तो पूरी प्रकृति और भगवान सब मिल के हमारे लिए कार्य करने लग जाते हैं। और यहाँ पर मेरे हाथ में श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज मेरे हाथ में आई। और उसको क्योंकि एज एन इंजीनियर मुझे रिसर्च में बहुत सारा पढ़ना पड़ता था, भगवत गीता पढ़ना शुरू किया इसी एटीट्यूड के साथ, स्क्रूटिनाइजिंगली, इसमें कुछ गलती हो सकती है, चलो पकड़ते हैं,
0: क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।
1: एग्जैक्टली, गलती तो नहीं मिली लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया और इससे मैं भक्ति योग में जुड़ा।
0: किस तरह के परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप?
1: जब हम देखते हैं भगवत गीता हमें बताती है कि आप इस संसार में जब भी जितनी भी खुशी, किसी भी वस्तु में जितनी खुशी को एंजॉय कर सकते हैं, वो वस्तु आने वाले समय में आपको उतना ही दुख प्रदान करने वाली। उदाहरण देखिए, आप मान लीजिए बहुत एक दो साल तक पैसा सेविंग करते हैं कि मुझे एक बड़ी कार खरीदनी है।
0: जी जी।
1: और आप खरीद के आ जाते हैं, शोरूम के बाहर निकलते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन जैसे ही आप शोरूम से बाहर निकलते हैं और कार को आप जैसे ही टर्न मारते हैं और रोड पे आते हैं, अचानक से लेट से रिक्शा वाले ने आके स्क्रैच मार के निकल गया। तो बताइए वो स्क्रैच आपकी गाड़ी पे लगा या आपके दिल?
0: बिल्कुल दिल पे लगा।
1: इस गाड़ी में जितना सुख दिया
0: आपने तो मुझे कुछ याद भी दिलवा दिया कि बताएं। हम कहते हैं ना कि ओनली योर चाइल्ड हैज द कैपेसिटी टू हर्ट यू मोस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि जितना प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं, जितना ख्याल उनका रखते हैं, जितनी खुशी वो हमें देते हैं, तो क्या एक वक्त पे वो हमें सबसे ज्यादा दुख दे सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं और वो देते हैं।
0: अच्छा हमने भी दिया है, जब हम बच्चे थे तो हम भी अपने जो है माता पिता को पेरेंट्स को परेशान करते ही थे, तो दुख तो हमने भी दिया है। ये तो एक जनरेशनल प्रोसेस है जो आगे बढ़ रहा है।
1: यस, आप देखेंगे कि जिससे जितना लगाव है उससे जितना प्रेम मिलता है उससे उतना ही क्लेश भी मिलता है।
0: ओके
1: राइट। ये केवल दूसरों की बात नहीं है, रिश्तों की बात नहीं है, स्वयं हमारा शरीर भी जितना सुख देता है वो जाते जाते उतना दुख भी देके जाता है।
0: जी,
1: हमारा
0: जी।
1: मन जितना हमें सुख देता है उतना ही दुख भी जाता
0: है। देकर
1: बिकॉज इस संसार में एक कंसेप्ट है कि सुख के साथ दुख फ्री में मिलेगा, तो दो ऑपोजिट पोल्स के बीच में हमेशा हमें ट्रेवल्स करना पड़ता
0: है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक पैकेज है जो कि साथ में ही आएगा।
1: लेकिन भगवद गीता हमें बताती है कि सुख और दुख के ऊपर भी एक ऐसी दुनिया है, जब सुख के पीछे भागते तो दुख मिल सकता है, लेकिन हाँ। एक ऐसी दुनिया है जहाँ की अगर हम सुख के पीछे भागेंगे तो सुख बढ़ता चला जाए, और उसको कहते हैं वो एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि ये दो पोल्स के बीच में दुनिया नहीं चलती। जब सुख के पीछे भागते हैं तो बढ़ता जाता है, और उसको सुख नहीं बोलते, उसको आनंद कहते हैं।
0: आनंद कहते हैं।
1: इस आनंद की खोज हमने शुरू करी और ये बढ़ता चला गया।
0: तो किस प्रकार का आनंद है ये जीव गोपाल दास जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम भी उस आनंद की अनुभूति करना चाहेंगे आपकी मौजूदगी के साथ में?
1: ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और भगवद गीता बताती है कि ऐसे प्रश्न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। अगर इसलिए आप सबके मन में भी यही प्रश्न है कि हम कैसे इस सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, इस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको ABCDE फॉर्मूला देंगे। ए फॉर्मूला इस ऐसे लोगों के साथ पहले एसोसिएट कीजिए जो कि इस आनंद की खोज में हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं तो क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर नहीं बनते अगर वो हॉकी के मैदान में जाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते।
0: जी,
1: विच मीन्स कि उन्हें क्रिकेट के एक्सपर्ट्स का एसोसिएशन चाहिए था और एक समय उन्हें चाहिए था, और एक ऐसा समय आया जब पूरी दुनिया उनके एसोसिएशन के पीछे दीवानी थी। सो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: यानी जिन लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, जिस स्थान पे हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमें बनाने में, हमारी पर्सनालिटी को एस्टैब्लिश करने में।
1: एग्जैक्टली। आप देखिए कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया से दूर होना चाहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और बताने आजकल कितने प्लेटफॉर्म्स आ गए, इनसे दूर होना चाहता हूँ, परंतु वे दूर नहीं हो पाते। प्रयास करते हैं, हर साल रिजोल्यूशन लेते हैं कि अब नहीं करूंगा, ये आदतें मैं छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ पाएंगे जब तक कि ऐसे लोगों का एसोसिएशन नहीं लेंगे जो कि छोड़ चुके हैं या छोड़ने का सीरियस प्रयास कर रहे हैं
0: या इस प्रकार के वातावरण में रहते ही नहीं है, उसका प्रयोग करते ही नहीं है।
1: एग्जैक्टली।
0: तो देखिए जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है हमारा, और इसके जो श्रोता है वो काफी हद तक एक छात्र कम्युनिटी भी है, स्टूडेंट कम्युनिटी भी है, तो खास तौर पे मैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बात आपसे पूछ रही हूँ कि समय के साथ में कई बार हमारे वातावरण के भी प्रभाव में आके हमारे कुछ स्टूडेंट्स कुछ एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो उस एडिक्शन से बाहर निकलने का भक्ति साधना में क्या जरिया हो सका है?
1: आपका ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा स्पिरिचुअलाइज्ड क्वेश्चन है। इस प्रश्न के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, पर देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स तैयार हैं कि नहीं।
0: जी।
1: सो फर्स्ट थिंग इज, अगर स्टूडेंट्स किसी भी तरह के एडिक्शन में फंसे हैं तो उन्हें सबसे पहली चीज ये सोचनी चाहिए थी क्या वे बदलना चाहते हैं। अगर उनके अंदर से प्रश्न आता है मैं बदलना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। करने के लिए उन्हें ऐसे व्यक्तियों से एसोसिएशन लेना पड़ेगा जो कि अपने जीवन को बदल चुके हैं। मैं एक सुंदर सा उदाहरण देता हूँ। शिला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, 1966 में वो न्यूयॉर्क पहुंचे, और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद
0: जी
1: वो उनके गुरु ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था कि जाकर आपको विदेशों में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है भगवद गीता और भागवत धर्म का।
0: जी।
1: तो इसीलिए वे पहुंचे वहां पर, और वहां उन्होंने देखा कि समाज में कोई नियम ही नहीं है। एडिक्शन तो छोड़ दीजिए, एक्सट्रीम एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शन, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कोई ऐसा एडिक्शन नहीं था जो वो करते थे।
0: जी।
1: नहीं करते थे, परंतु शिला प्रभुपाद ने उनको एक चीज दी, जैसा हमने डिस्कस किया एसोसिएशन, संघ प्रदान किया। किसका संघ दिया? शिला प्रभुपाद भगवान के एक शुद्ध भक्त थे, और उन्होंने शुद्ध भक्त जब किसी व्यक्ति को संघ प्रदान करता है तो किस प्रकार से उनके जीवन में चेंज आया आप देखिए। ऐसे लोग जो कि एडिक्शन से बाहर नहीं आना चाहते थे, कृष्ण का नाम जीवन में कभी सुना नहीं
0: जी,
1: लेकिन वे भक्ति योग को इतना सीरियसली प्रैक्टिस करने लगे कि सुबह 4 बजे उठते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, भगवद गीता पढ़ते ही नहीं थे, जाकर भगवद गीता को डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे ज्यादा से ज्यादा। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। जिसने कृष्ण का नाम नहीं सुना, भगवदगीता का भी सुना नहीं है, वो भगवदगीता के डिस्ट्रीब्यूशन को कर।
0: बल्कि मेरा अपना एक पर्सनल जो है अनुभव कहिए, ऑब्जर्वेशन कहिए, कि हम जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ तो गीता हमारे जीवन का एक आधार है, है ना। लेकिन अगर हम विदेश की बात करें तो उनका जुड़ाव तो आप छोड़िए, कि आपने जैसे कहा कि उन्होंने कभी धर्म का नाम ही नहीं सुना था इस प्रकार का, तो उनका जो भक्ति भाव हम देखते हैं वो हमें बहुत इम्प्रेस करता है, कि कैसे एक इंसान एक डिफरेंट कल्चर से आकर उठकर दूसरे कल्चर में किस तरीके से अपने आप को जो है वो समाहित कर लेता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो असर आप बात कर रहे हैं, ये कैसे होता है, किस प्रकार से ये हम किसी व्यक्ति को जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं कि आप इस भक्ति भाव की तरफ जाएं, आप एडिक्शन से जो है बाहर निकलें, और क्या क्या जरिए हो सकते हैं इसको अपनाने के?
1: सबसे प्रमुख, मैम आपने बहुत अच्छा ये भी प्रश्न किया है, सबसे प्रमुख चीज जो व्यक्ति को जानना चाहिए, अपनी सही पहचान को
0: जी।
1: हमारी सही पहचान का अर्थ है कि क्या जो मैं रोज सुबह ब्रश करते हुए आईने में देखता हूँ,
0: हाँ,
1: क्या मैं यही हूँ? कहने का तात्पर्य ये है,
0: यानी हमारा क्या शरीर ये हमारा ही है या हम ही शरीर के ही हैं,
1: या मैं शरीर हूँ भी कि नहीं,
0: हूँ भी कि नहीं।
1: फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की तरह देखिए, अगर ड्राइवर कहे कि मैं ही गाड़ी हूँ,
0: हाँ,
1: तो क्या ये सही होगा? तो ड्राइवर तो गाड़ी नहीं होता,
0: नहीं हो सकता।
1: गाड़ी केवल एक माध्यम है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए
0: जी।
1: इसी प्रकार से ये शरीर हम नहीं है, क्योंकि ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवत गीता हमें बताती है कि आप शरीर नहीं है, आप शरीर को चलाने वाले ड्राइवर अर्थात आत्मा है, और उस आत्मा की पहचान अगर आप सही से कर लेते हैं तो फिर आप केवल इस शरीर को जैसे चलाना चाहें, अपने मन और बुद्धि को जैसे चलाना चाहें इसको चला सकते हैं। मन तब परेशान करता है जब आप सोचते हैं मैं मन हूँ। जब आप मन को बोलेंगे कि तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम है, तुम मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ और तुम मेरे मन हो, मैं मन नहीं हूँ, जब मन को स्वयं से अलग कर कर वो व्यक्ति देखने लगता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन किसी व्यक्ति को आप बोलेंगे कि आप सही नहीं है, तो उस व्यक्ति को ये प्रश्न पूछना चाहिए, सही क्या नहीं है? आप शरीर की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, या बुद्धि की बात कर रहे हैं? कि आत्मा तो हमेशा सही है,
0: सही है बिल्कुल।
1: तो जब पता चला कि प्रॉब्लम तो मन में थी, मन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उस पे काम करते हैं। लेकिन वो मन मैं ही मान लूंगा ना, तो मेरा अहंकार इसे एक्सेप्ट करने के लिए मुझे मानने नहीं देगा, और मेरा अहंकार मुझसे कहेगा अरे मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। और यहाँ हम सुधार करने के लिए तैयार नहीं, कितना ही बुरा एडिक्शन हो हमारे जीवन में
0: जी,
1: लेकिन वो सुधारा जा सकता है अगर हम एक्सेप्ट करें कि वो प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, हमसे जुड़े एक एलिमेंट में, तत्व में है। गाड़ी में प्रॉब्लम है उसको सुधार सकते हैं, ड्राइवर में प्रॉब्लम है तो मुश्किल हो गया ना। इसलिए मन को अपने से अलग कर देख कर और फिर उस पर कार्य करें, बड़ा आसान।
0: तो ये जो आप कह रहे हैं कि शुरुआत करें अपने मन पे काम करने की, उस मन पे काम करने के लिए पहला स्टेप क्या हो सकता है?
1: मन को क्या अच्छा लगता है वो करिए। कितना आसान हो गया ना,
0: जो मन करे,
1: नहीं, मन
0: जहाँ मन जाए, क्योंकि मन तो एक चंचल है। अक्सर हम कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, ये शब्द यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं इनका मन के लिए, तो उस चंचला को भी तो नियंत्रित करना जरूरी होता है।
1: आप अगर स्प्रिंग को दबाएंगे, एक साल तक दबाए रखेंगे, तब भी वो उछल के रिएक्ट करेगा। मन भी बेचारा ऐसा ही है, उसमें इसकी क्या गलती, उसकी प्रकृति ऐसी। मन में 3 चीजें होती है, थिंकिंग अर्थात सोचता है, फीलिंग अर्थात कुछ महसूस करता है, और इंटेंशनैलिटी यानी कि कुछ करने की उसमें प्रवृत्ति होती है। अब ऐसे में जो दूसरा मैंने पार्ट, मन के अंदर फीलिंग्स होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ महसूस करना चाहता है, जहाँ उसको अच्छा लगता है वो करता है ना। तो अगर हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना है और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है। देखिए दो चीजें मन एंजॉय करता है, एक तो या तो आध्यात्म में बढ़कर अपने आप को कंट्रोल कर लेगा
0: जी,
1: या फिर यू नो भौतिक विषयों में एडिक्शन में कहीं ना कहीं
0: फंस जाएगा। और भौतिक भी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एडिक्शन जो कहते हैं कि हर व्यक्ति एडिक्टेड है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अल्कोहल एक एडिक्शन है या ड्रग्स एक एडिक्शन है। मुझे कई बार लगता है कि चाय भी एक एडिक्शन है जो हम मेरे जैसे भारतीयों को बहुत विचलित करती है। बार बार किसी से बात करने की इच्छा होना, मन को खाली करना, वो भी एक एडिक्शन है। कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी बहुत फैलाते हैं अपने आसपास, वो भी एक एडिक्शन है कि उनको उस तरह की बातें करने की आदत हो गई है। तो ये जो एडिक्शन है जो खास तौर पे हम जिस पे बात कर रहे हैं, तो भक्ति मार्ग में उससे निकलने का क्या तरीका बताया गया? उस मन को नियंत्रित तो नहीं करने की बात कहूंगी मैं अब, क्योंकि आपने कहा जितना नियंत्रित करेंगे वो उतना बेकाबू होता चला जाएगा, तो उसको सही मार्ग पर लेकर आने का क्या तरीका हो सकता है?
1: वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। अब अगर दूसरे स्टेप पे आगे बढ़े, कंट्रोल मत करिए, फोर्स मत करिए मन को जो अच्छा लगता है वो करते हैं ना।
0: हाँ।
1: तो हम लाइफ में अगर एनवायरनमेंट ऐसा रखें जैसे कि सुबह जल्दी उठना, सुबह वॉक पे जाना, सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करना, अच्छा क्वालिटी का भोजन लेना, केवल जीवा की तृप्ति के लिए रोज पिज्जा बर्गर नहीं खाना। तो कहने का तात्पर्य अगर अच्छी आदतों में भी मन को अच्छा लगने लगे तो करने लगेगा। तो मन को ये कन्विंस करना और उस ज्ञान के स्तर पर लाना कि अच्छी चीजें अच्छी,
0: तो यानी मन को भी हमें कन्विंस करना होगा, बच्चे की तरह समझाना होगा उसको कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है ये बुरा है,
1: उसके इमोशंस में अच्छी चीजों को भरना है।
0: हाँ।
1: जैसे कि जब टंकी में
0: हाँ।
1: पानी गंदा होता है,
0: हाँ, है ना?
1: तो हम टंकी पूरी इतनी बड़ी यू नो टैंकर साफ करने तो नहीं जाते। हम क्या करते हैं,
0: फिल्टर लगा देते हैं।
1: हाँ। फिल्टर भी लगाते हैं और एक और चीज करते हैं, ऊपर से साफ पानी चालू करते हैं और नीचे से गंदे पानी को निकलने का रास्ता छोड़ देते हैं। हाँ। जैसे ही गंदा पानी निकलता जाता है पानी साफ हो जाता है। कहने का तात्पर्य अच्छे विचारों को, सात्विक विचारों को मन में आने दें, भगवत गीता के उत्तम विचारों को मन में आते रहने दें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन में जगह तो उतनी है ना। जैसे अच्छे विचार अंदर आएंगे, जो पुराने विचार हैं, दुखित विचार हैं, धीरे धीरे बाहर होते जाएंगे। कुछ समय में आप देखेंगे मन में अच्छे विचार ज्यादा हैं और स्वयं अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं।
0: अक्सर कहा जाता है कि मेरा मन नहीं लगता है ना, और जैसे हमारे बॉलीवुड ने मन को बड़ा रोमांटिसाइज भी कर दिया है कि मेरा मन तुम्हारे बगैर नहीं लगता है, या मन जो है वो अकेले खुशी नहीं देता है, किसी और के साथ खुशी नहीं देता है। तो मन लगाने का क्या तरीका है भक्ति मार्ग में, मन को हम कैसे लगाते हैं और किस प्रकार से जो है वो, जैसे आप एक तरीका आपने सुझाया कि सुबह समय से उठें और मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करने के क्या तरीके हो सकते हैं, ये हमें कैसे अफेक्ट करता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
1: इस पे दो प्रश्न मैं देख पा रहा हूँ। पहला ये कि मन को कैसे हम अध्यात्म में लगा सकते हैं
0: जी।
1: और बॉलीवुड ने जिस प्रकार से मन को या दिल को जिस प्रकार से रोमांटिसाइज किया है उसी को यूज कर लेते हैं। जब किसी से प्रेम होता है यू नो आप देखिए बॉलीवुड में भी या हॉलीवुड में भी लव जो होता है, प्रेम होता है
0: जी,
1: वो वन साइडेड होता है, एक तरफा है। कहने का तात्पर्य है कि उसे एक तरफा ही रखे ना, बट प्रॉब्लम
0: लेकिन क्या एक तरफा जो प्रेम है क्या वो पूर्ण प्रेम कहा जा सकता है, क्या वो फुल सर्कल है?
1: यस वही पूर्ण है। यही मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि एक तरफा लव ही प्रेम ही जो है पूर्ण है।
0: हाँ।
1: जब दो तरफा से हो जाता है
0: तो
1: उसमें स्वार्थ जुड़ जाता है, मैं कुछ आपके लिए करता हूँ आप मुझे बदले में कुछ देंगे, ये तो बिजनेस हो गया,
0: ये बिजनेस हो गया।
1: प्रेम तो केवल एक तरफा ही होता है,
0: यानी अपेक्षा रखना जो है वो बिजनेस है।
1: एग्जैक्टली अभी हम भक्ति योग में यही करते हैं कि भगवान से कहते हैं, एक संस्कृत में चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है
0: जी।
1: उसकी छोटी सी पंक्ति ऐसी है
0: जी।
1: यथा तथा वा विदधा तु लंपटो मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः। व्हाट डज द चैतन्य महाप्रभु सेज, महाप्रभु सेज कि देखिए भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मैं आपकी प्रेम से सेवा कर रहा हूँ
0: जी,
1: आप मेरे साथ कुछ भी करिए,
0: समर्पण,
1: आप कुछ भी करिए मेरे
0: जी,
1: साथ
0: जी,
1: कितने
0: जी।
1: ही बुरे दिन दिखाइए, लेकिन ये मेरी परीक्षा है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आप ही मेरे प्राणनाथ
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी।
1: जब हम ऐसा कह देंगे तो स्वार्थ से हम बाहर निकलने के लिए अपने आप को खोल देते हैं,
0: यानी प्रभु को समर्पित कर दें हम स्वयं को।
1: एक जगह प्रेम है और दूसरी तरफ काम है। बॉलीवुड में काम को प्रेम की तरह दिखाया जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में होता है वो इन दोनों को अलग अलग करके देख पाता है और वो शुद्ध प्रेम से बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा में लगा रहता है, उससे जो आनंद आता है वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर कामवश व्यक्ति किसी प्रेम में फंसा है, काम में फंसा है, तो थोड़े दिन के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसीलिए हम जब काम की भावना से किसी रिलेशनशिप में या मैरिज में या किसी भी रिलेशनशिप में जब घुसते हैं
0: जी,
1: तो उस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आता है।
0: इट डजंट लास्ट लॉन्ग।
1: यस, और जब निस्वार्थ सेवा में जाइए उस रिलेशनशिप में, वो पूरे जीवन आपके साथ
0: है। तो ऐसा कोई मार्ग, जैसे अक्सर हमने सुना है कि आपने कहा दो तरीके हो सकते हैं मन को जो है वो सही रास्ते पे लगाने के, एक मेडिटेशन हो सकता है, अगर हम करें तो मन नियंत्रित रहेगा, दूसरा तरीका भक्ति मार्ग भी हो सकता है। तो क्या ये दो अलग अलग तरीके हैं, और हैं तो किस प्रकार से ये हमारे शरीर और मन पे काम करते हैं?
1: ओके, तो इसमें हम क्विकली अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भक्ति क्या अलग से करनी पड़ती है या हमारे अंदर है।
0: जी,
1: सो अगर शॉर्ट में बोले तो एक बच्चा माँ से बच्चे का क्या रिलेशन होता है, क्या रिश्ता है ये माँ और बच्चे का?
0: एक जुड़ाव है, एक ममता। हाँ,
1: ममता, ममता में प्रेम है।
0: जी जी,
1: तो ये प्रेम का बच्चे का और माँ का जो रिश्ता है,
0: जी जी,
1: इसमें जब माँ को बच्चे से प्रेम होता है तो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर बच्चे को सर्व करती है।
0: जी जी,
1: एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा उसके पंख फैल जाते हैं, निकल जाते हैं और वो उड़ना चाहता है। माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, जा तू उड़ और अपने जीवन में यू नो सक्सेस को, सफलता को प्राप्त कर। वो रोती है, अंदर ही अंदर रोती है, लेकिन वो निस्वार्थ होती है। ये माँ का प्रेम
0: बांधता नहीं है, यानी प्रेम कभी बांधता नहीं है हमें किसी रिश्ते में या फिर
1: दूसरे रिश्ते के बारे में सोचता है कि ये कितना अच्छा करेगा इस प्रेम में। अपने स्वार्थ से बाहर निकल के व्यक्ति
0: निकल के सोच पाता है,
1: और यही भक्ति है। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है और हम भगवान का अंश है। जैसे कि शरीर से माँ ने हमें जन्म दिया है, वैसी आत्मा रूप में इस आत्मा को भगवान ने जन्म दिया है। भगवान का अंश है ये आत्मा। तो उस एंगल से हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता हुआ? प्रेम का,
0: प्रेम का रिश्ता।
1: और प्रेम का रिश्ता है तो क्या करेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। शरीर समाप्त हो जाएगा एक दिन, लेकिन आत्मा हमेशा अमर है,
0: साथ में रहेगी। बिल्कुल,
1: हमारा इटर्नल शाश्वत रिश्ता है भगवान से प्रेम का। और यही अगर हम प्रेम भगवान से करते हैं तो भक्ति हमारे जीवन का अंश है, अलग से नहीं करनी है।
0: जी जी, और ये जो मार्ग है इस पे चलने में परिवार का, हमारे आसपास के घर का माहौल का कितना असर पड़ता है?
1: जैसे हमने कहा कि शरीर जो है बदलता रहता है, आत्मा का पिछले जन्म में तो कोई घर था,
0: घर था।
1: अगर उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है
0: जी
1: भक्तियों को, इस जन्म में आकर उसको अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता तब भी वो फेवरेबल एनवायरनमेंट बना लेता है या उस फेवरेबल एनवायरनमेंट में चला जाता है। ये नेचुरल है हमारे साथ। अगर मुझे क्रिकेट खेलने की इच्छा तो अपने आप क्रिकेट के ग्राउंड में मिलूंगा मैं आपको। वैसे जिसका भक्ति योग, जिसने पहले भी पिछले जन्मों से भक्ति करी अभी पूर्ण नहीं हुई, पूर्ण करने के लिए वो अगले जन्म में भी वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के पहुंच जाएगा।
0: यानी कि अक्सर हम कहते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें लगता है कि शायद इनसे पहली बार नहीं मिले, मिलते ही जैसे आज आपसे मुझे मिलके ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे पहले भी मिली हूँ। तो ये एक हमारा रिश्ता होता है जो हम कभी पहले किसी और जन्म की जब हम बात करते हैं, या एक आप कहिए कि लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं, लाइक माइंडेड जो पीपल होते हैं, तो उनका मन को एक दूसरे को आप पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं कि आप जो बात करें वो मेरी समझ में आ रही है और जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो आप उस भाव को समझ पा रहे हैं। तो ये रिश्ता बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग पे चलने के लिए। मैं जीव गोपाल दास जी एक ऐसी समस्या की बात करूंगी कि जो हमारा जो युवा वर्ग है खास तौर पर, वो बहुत जूझ रहा है समस्या से, और ये समस्या ऐसी है कि मुझे लगता है कि जिसमें शायद उनकी ज्यादा गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि सोशल मीडिया का भी प्रेशर बहुत ज्यादा है, उनको पोस्ट करना होता है, लाइक करना होता है, दोस्तों ने लाइक नहीं किया, या फिर रात भर जो है गेम खेलते हैं, सुबह पेरेंट्स जो है वो शिकायत करते हैं कि सुबह टाइम से नहीं उठते हैं, स्कूल में नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, एग्जाम्स के समय पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली ये जो सारी चीजें हैं उनको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। तो क्या भक्ति मार्ग में ऐसा कोई रास्ता है जिसके द्वारा जो है वो अपने इस तनाव से बाहर निकल सकते हैं?
1: अभी हमने जैसे चर्चा किया कि भक्ति करनी नहीं होती है,
0: हो जाती है,
1: हमारे अंदर
0: होती है।
1: इसी प्रकार से अगर मान लीजिए, उदाहरण देता हूँ कि एक मछली से कहा जाए कि आपको पेड़ पे चढ़ के कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आना है, और बंदा

0: रंग में ये प्रोग्राम आप प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरीके से ये हमारे छात्रों को, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को प्रभावित कर रहा है, और कुछ ऐसे उदाहरण अगर आंखों के सामने आप देख पाते हैं, कोई ऐसे एग्जांपल कि बच्चों के जीवन में कोई बदलाव आ रहा है इससे, तो वो मैं जानना चाहूंगी।
1: राइट मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सो नेचुरली हमारी कुछ फीलिंग्स होती हैं, वो किसी ना किसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड होती हैं। जैसे कि जैसे ही हमने यहाँ पर इन प्रोग्राम्स को शुरू किया, हम शुरू में कीर्तन करते हैं विद म्यूजिक एंड डांस, तो उसके साथ साथ म्यूजिक डांस के साथ जब हम इस कीर्तन को करते हैं, तो अपने आप ही नेचुरली कुछ स्टूडेंट जिनको म्यूजिक अच्छा लगता है, जिनको डांस अच्छा लगता है, स्वयं अपने आगे आ गए। उन्हें कहा हम भी कीर्तन करना
0: चाहेंगे।
1: सो उनके अंदर वो उनका नेचर था, हमने उनको एक चैनलाइज किया।
0: जी जी।
1: ऐसी कुछ स्टूडेंट्स आए बोले कि सर हम इंजीनियरिंग में हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा जो मैंने किया, मैंने इस प्रोफेशन से सीखा और मैं अभी उसी टैलेंट को सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ। हमारे आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशंस को भी जो है टेक्नोलॉजी में का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, अर्थात ये टेक्नोलॉजी जो हमें दे सकती है वो हमें भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन बच्चों ने कहा यस सर हम भी करना चाहेंगे, आप आइए इंटर्नशिप करिए हमारे साथ में और अच्छे से एक्सपोजर लीजिए। बच्चे बिल्कुल खुश हो गए, बोलते हैं यस सर हम करना चाहेंगे। उन्होंने अपना डिटेल्स दिया कि भाई आप ये रहा हमारा सीवी, आप प्लीज इसको परस्यू करिए। कुछ स्टूडेंट्स आए बोले सर मैं क्या कर सकता हूँ। हमने कहा आप क्या कर सकते हैं आप सोचिए, आपका नेचर क्या, आपकी प्रकृति क्या है, और आप भगवत गीता में बताती कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, अर्जुन के अंदर तीर चलाने का टैलेंट था, उसको भगवान की सेवा में लगाया, वैसी आपके अंदर जो भी टैलेंट है अगर उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे, तो वो आपके बंधन का, इस संसार में बंधन का कारण बन सकता है। अगर पूर्ण रूप से मुक्त होना है तो जो कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है उसको भगवान की सेवा में लगाइए। इसलिए स्टूडेंट से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये म्यूजिकल अवेकनिंग का जो प्रोग्राम है एवरी ट्यूजडे इवनिंग 4 PM शारदा यूनिवर्सिटी के टेम्पल में हॉल में होता है, और वो आकर जरूर अटेंड करें। वहाँ आप अपने टैलेंट को फ्रीली कैसे आध्यात्मिक रूप से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। मंदिर केवल घंटी बजाने के लिए नहीं है, मंदिर वो है जो आपके अंदर के नेचर को बाहर निकाल कर लाए, ताकि आप अंदर और बाहर दोनों तरफ सफाई से देख सके। So, ये हम प्रयास
0: करते हैं। अध्यात्म हमें वो क्लैरिटी देता है कि हम अंदर और बाहर अच्छे से देख पाते हैं, डिफरेंस समझ पाते हैं।
1: हाँ, आप देखिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसका टैलेंट जो था वो तीर चलाने में था, और भगवान ने उससे कहा तुम्हारा टैलेंट है तीर चलाने का, तो उसे ही भगवान की सेवा में लगाओ, अलग से जाकर कहीं योग और ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है।
0: जी,
1: यही भक्ति योग।
0: यानी अगर हम अपने कर्म पे ध्यान दें, जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, कर्म करते जाएं और भक्ति भाव से अपने कर्म को प्रभु को समर्पित कर दें, तो ये जो समर्पण की जो भावना अगर हमारे अंदर रहेगी, तो ये स्वयं ही हमें भक्ति मार्ग पे ले जाएगी।
1: जी।
0: और जो तनाव, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी जो हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हम स्वयं ही इससे बाहर निकल पाएंगे।
1: यस मैम, बहुत सुंदर कहा। इसमें छोटी सी बात मैं जोड़ूंगा
0: जी,
1: कि हमें किसी ना किसी को गुरु तो हम बना ही लेते हैं। या तो भगवत गीता को अपना गुरु बना लें, या मन को गुरु बना लें।
0: मन को गुरु
1: बना, मन को बनाएंगे तो वो क्या करवा रहा है ये तो हमने देख लिया। एक बार भगवत गीता को गुरु बना के देखिए।
0: बना के देखिए। तो जो गुरु की जो एक कंसेप्ट हमारे धर्म में मौजूद है, हमारे पुराणों में मौजूद है, तो वो गुरु ही हमें जो है आगे लेके जाते हैं, हमारे सूत्रधार बनते हैं जीवन के।
1: यस, भगवत गीता 4th chapter में भगवान इसको कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनाम् तत्वदर्शिना। जिसने तत्व को देखा है वो आपको तत्व के बारे में बता सकता है। आपने बस 3 चीजें करनी है, जाके समर्पित करना है, दूसरा प्रश्न पूछना है, तीसरा थोड़ी सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव। और इसी की प्रैक्टिस हम यहाँ करते हैं।
0: बहुत सुंदर। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जितना आनंद मुझे, जैसे आनंद की अनुभूति मुझे हुई है इस कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत करते हुए, आप सबके बीच लेके आते हुए, उतनी आनंद की अनुभूति आपको सुनने में भी जरूर प्राप्त हुई होगी। तो अभी है हमारे साथ में जीव गोपाल दास जी, जो कि अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं और गीता दर्शन के लिए और इस्कॉन के प्रचार प्रसार के लिए, भक्ति मार्ग के लिए, और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जैसे आपके जैसे लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने समय निकाला और हमें, हमारे छात्रों के साथ में, हमारी कम्युनिटी, हमारे समुदाय के साथ में सुनो शारदा 90.8 FM पे हमारे बीच में ये कुछ अपने विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते रहेंगे दोबारा से। फिर से कोशिश करेंगे कि फिर से आपके विचारों को हम सुनो शारदा पे दोबारा से जो है प्रस्तुत करें। बहुत बहुत

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है सादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: द वर्ल्ड इज हियर।
2: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवद गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
3: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।
3: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की। मैं कोशिश करता हूं अपने से खास प्रोग्राम के माध्यम से, इसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। कोई शख्स अगर आपके इस घर में आ रहा है, आंगन में आ रहा है, लेकिन उससे पहले उसकी कामयाबी के चर्चे चहुंओर हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर कोई चर्चा, कोई खास विषय जिस पर बहुत सारी बातें होने वाली है, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमारे साथ आज जुड़ रहा है। विषय ही कुछ ऐसा है, विषय है खोजी पत्रकारिता, यानी कि इसके विषय में जानने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और कौन शख्स हैं, कौन शख्सियत हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। 1.5 दशक से ज्यादा समय से आप पत्रकारिता में सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं, और आपका जो अनुभव है, जी न्यूज के साथ आप जुड़े रहे, न्यूज एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहे, न्यूज चैनल है, डीडी न्यूज है, और तमाम सारे चैनल्स के साथ बहुत बड़ा अनुभव के साथ आप आते हैं, आप हैं। और वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो न्यूज 18 में आप इस समय कार्यरत हैं। आनंद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सुनो शारदा 90.8 FM पर।
6: बहुत बहुत धन्यवाद, शारदा यूनिवर्सिटी ने मुझे यहाँ पर बुलाया स्टूडेंट के साथ 1-to-1 गेट टूगेदर करने के लिए। अच्छा लगेगा मुझे अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर स्टूडेंट के साथ शेयर करने के लिए पत्रकारिता का।
5: बेशक सर, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, जानने की समझने की कोशिश कर रहा था, सीनियर जर्नलिस्ट आप हैं और आपका जो एरिया आता है वो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, तो सबसे पहले मैं सबसे स्टूडेंट्स के ब्याह पे यही जानना समझना चाहता हूं कि खोजी पत्रकारिता का जब जिक्र आता है तो पुराने समय का हम जब जिक्र करें तो गुप्तचर हुआ करते थे, हनुमान जी का जिक्र आता है, तो वर्तमान समय में इस डेजिग्नेशन को कैसे हम परिभाषित करेंगे, किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को आप समझाना चाहेंगे?
6: देखिए, मैं 2005 से क्राइम इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म कवर कर रहा हूँ। तो जब मैं 2005 में इस फील्ड में नया नया आया था तो एक चैनल के साथ मैंने इंटर्नशिप शुरू करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन फील्ड में आपको काम करने का किसी भी स्टूडेंट को मौका मिलता है तो पहले तो उसके अंदर झिझक नहीं होना चाहिए किसी भी तरह की।
5: क्या बात।
6: और उसके अंदर एक ऐसी डेयरिंग होना चाहिए कि वो किसी से भी फोन करने में, बात करने में, मिलने में हिचकिचाए नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं। क्योंकि आप अपने प्रोफेशन के लिए अगर किसी से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, या आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टाइमिंग या पर्सन ये सब डिपेंड नहीं करता है, आपको अपना काम डिपेंड करता है। और उसके लिए आप किसी भी हद तक
5: जा सकते हैं, जा सकते हैं
6: और जाना भी चाहिए। अगर आपको एक अच्छा मेहनती जर्नलिस्ट बनना है और आज के सिनारियों में अगर आपको वो सर्वाइव करना है तो उसके लिए मुझे लगता है कि इसके लिए आपको जुनून होना बहुत जरूरी है, चाहे आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन की फील्ड में हो या
5: किसी भी फील्ड में,
6: स्पोर्ट्स में हो, एंटरटेनमेंट में हो, आप किसी में हो, बिजनेस में हो, आपको उस फील्ड में आपको
5: जुनून चाहिए,
6: पागल करना पड़ेगा आपको।
5: क्या बात है।
6: जब आप उससे प्यार करने लगेंगे तो जाहिर तौर पर अपना पूरा समर्पण उसके लिए देंगे।
5: क्या बात है। तो लिसनर्स, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ हमारा यही है कि बात जो निकलकर सामने आई है कि जुनून, पागलपन, जब आप प्यार करेंगे तो निश्चित तौर पर वो क्षेत्र भी आपको प्यार करेगा, लोग भी आपको बेशुमार प्यार बरसाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरियानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, मिस्टर आनंद तिवारी जी। बहुत अच्छे बड़े अनुभव के साथ आप आते हैं और खोजी पत्रकारिता के यूं कहें कि महारथी हैं। मैं हिंदी में बात कर रहा हूं और ये बातें कहीं ना कहीं हमें टच करती हैं। खोजी पत्रकारिता का जब जिक्र होता है तो जिक्र होता है गुप्तचरों का, जिक्र होता है हनुमान जी का, क्योंकि वो खोजी पत्रकारिता की ही वजह से पता लगा पाए थे कि सीता मैया कहाँ हैं। तो कहीं ना कहीं जो सर ने जिक्र किया कि एक जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, प्यार करेंगे जब आप अपने क्षेत्र से तो निश्चित तौर पर उसका जो रिवर्ट आता है तो वो काम आपको आगे लेकर जाता है। तो सर मैं आपसे एक बार फिर से आपका सुरुशादा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
0: जुनून पागलपन का आपने जिक्र किया, इस बात को मैं आगे लेकर यूं जाना चाहूंगा कि खोजी पत्रकारिता नो डाउट हिम्मत का काम है। उसमें कहीं ना कहीं एक डर घबराहट है, कोई जरा सा भी थ्रेट दे देता है तो मैं समझता हूँ कि इंसान डर सकता है, घबरा सकता है या अपने करियर को वहीं रोक देगा, स्टॉप कर देगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां आपके सामने भी आई होंगी, क्या कहना चाहेंगे आप सर?
1: देखिए बिल्कुल, जब 2006 में मैं एक चैनल से जुड़ा था, S1 उसका नाम था, वो दिल्ली NCR का काफी बड़ा फेमस चैनल था। तो एक रिटायर्ड ACP मुझे मिले फील्ड में। उस समय एक व्हाट्सएप के फोन तो होते नहीं थे, या तो लैंडलाइन से बात करिए या अब जो नॉर्मल फोन होते थे उनसे बात करिए। तो ऐसा अब बहुत इजी हो गया, जर्नलिज्म पहले नहीं था उतना 2005-06 में। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी के साथ एक ने चीट किया है और वो वर्ल्ड बैंक में अपने आप को बताता था। और वो उस समय जो UP में जो सत्ता थी उसमें वो टॉप के 10-14 ब्यूरोक्रेट्स में उसका बेटा था।
0: अच्छा।
1: तो मैंने अपने एडिटर को वो स्टोरी बताई, हमने कहा कि बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है और जो काफी ज्यादा डॉबरी वगैरह उन्होंने ले रखी थी। तो हमने वो लड़की का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करके वो स्टोरी ऑन एयर हुई और वो काफी चली, डिबेट शो टाइप में हुआ, मेरा लाइव हुआ। उसके बाद शाम को मेरे को फोन आना शुरू हो गए, बेसिकली पावर का मिसयूज जिसको कहते हैं, मतलब मेरे खिलाफ गाजियाबाद पुलिस से बहुत सारे फोन आए मेरे एडिटर को कि आपके रिपोर्टर को अरेस्ट करेंगे, फेक न्यूज चलाइए। तो हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे पास तो विक्टिम था, हमारे पास सारी चीजें थी। और जैसा आपने बताया ना, वो डर उस समय मेरे अंदर नहीं था क्योंकि मैं तो उनके जहाँ पे वो लोग रहते थे हम वहाँ पे कैमरा लेके शूट करने चले गए, गार्ड्स के इंटरव्यू किए, अंदर नहीं घुसने दी, मतलब जो सारा टीवी का ड्रामा होता है वो हमने सारा करके दिखाया। उसमें
0: सबूत थे आपके पास?
1: सबूत थे, मतलब उसको आप टीवी की भाषा में आप ड्रामा हो सकते हैं, बेसिकली हमने एविडेंस कलेक्ट करे थे। उसके बाद वो केस बेस हुए, बहुत सारे थ्रेट कॉल आने लगे, मैं थोड़ा डर भी गया क्योंकि मैं जर्नलिज्म में नया इंटर्नशिप करके। मेरे एडिटर ने बोला कि तुम्हारी अगर न्यूज सही है तो डरने की जरूरत नहीं।
0: क्या बात है, क्या
1: उस
0: बात
1: समय
0: है?
1: बस मैंने एक दिमाग ये लगाया कि मेरा चैनल उस समय दिल्ली NCR का चैनल था, मुझे पता था कि ये न्यूज नेशनल कैसे बनेगी। तो मैंने एक मेरे सीनियर थे वो दूसरे चैनल में थे, मतलब देश का नंबर वन चैनल था उसमें थे, मैंने उनसे वो स्टोरी डिस्कस की शाम को स्पेशली फिल्म सिटी आके।
0: जी।
1: उनको वो बड़ी कैचिंग लगी। हाँ। तो मैंने सारा रिसोर्सेज अपना उनको दे दिया,
0: ट्रांसफर कर दे दिया,
1: कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सारा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: सारा कुछ और सारी डॉक्यूमेंट जो थे फोटोकॉपी करके उनको दे दी।
0: जी।
1: उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। हाँ। अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ। आप यकीन, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जो प्राइम टाइम शो आता है 8 बजे का, उसमें वो स्टोरी खुली
0: दूसरे चैनल पे जी
1: ऑन एयर हुई।
0: हाँ।
1: और उसके बाद मतलब शायद ही कोई मीडिया होगा दिल्ली NCR का जिसने वो स्टोरी फॉलो नहीं की। उसके बाद वो लड़का जेल भी गया जो था ब्यूरोक्रेट्स का, और फिर वो फैमिली हमारे चैनल्स में आई, उन्होंने हमारा थैंक्स करा, उनकी बेटी ने थैंक्स करा, उनके फादर ने थैंक्स करा कि आपकी स्टोरी से हमें ये बेस मिला। वो एक्चुअली वो जो मैंने स्विच करी थी स्टोरी वो मेरा अपना खुद का दिमाग था।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि उस समय मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, नया था जर्नलिज्म में, और फिर मुझे लग रहा था ये न्यूज अगर नेशनल नहीं बनी तो फिर बहुत सारे प्रेशर्स हम पे आएंगे और हम फिर मतलब एक मोरल डाउन होता है आपका, वो डाउन नहीं। और वो स्टोरी इतनी पिक हुई कि मतलब वो उसको
0: मैं समझ गया सर,
1: उसकी गूंज थी।
0: मैं आपको रोक रहा हूँ लेकिन मेरा जो सवाल करने का मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपकी स्टोरी से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं काम कर रहे हैं क्या सीख मिलती है। निश्चित तौर पर आपकी बात से उनको जरूर सीख मिलेगी कि आपको डरना नहीं है, धमकी भरे फोन भी आ सकते हैं, आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला जा सकता है, आपको अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि उस दिन अगर आनंद तिवारी जी रुक गए होते तो यहां तक आनंद भरी यात्रा नहीं कर पाते। ये जो सफर रहा है वाकई बहुत सुहाना सफर रहा है, तभी आप कुछ अपने अनुभव को शेयर कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स को बता पा रहे हैं। और मुझे यही कहना है स्टूडेंट्स कि अगर आप इस क्षेत्र में आ रहे हैं तो निर्भीक होकर, यानी कि डरेगा बिल्कुल मत, अच्छी तरीके से पत्रकारिता करिए। और निश्चित तौर पर ये समय ये वक्त आपका है, कह सकते हैं कि वक्त हमारा है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और कहीं जाएगा मैं, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान आनंद तिवारी जी, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो में आज मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप हैं मिस्टर आनंद तिवारी जी, सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम न्यूज 18 इंडिया से, जो कि खोजी पत्रकारिता का क्षेत्र सर का है, उस क्षेत्र में बहुत महारत हासिल है। उनके अनुभवों को हम जान रहे हैं। निश्चित तौर पर जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं इनसे जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि इस फील्ड में अगर आप आ रहे हैं तो क्या करें क्या ना करें, ये जान लेना समझ लेना बहुत जरूरी। तो सर एक बार फिर से सुरोशादा 90.8 एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ आज आपसे मिलकर, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है।
1: नहीं नहीं मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक हम लोग इंटरव्यू लेते थे एक तरीके से, दे रहे हैं ऐसा लग रहा है।
0: ये तो सर मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे चुना, अदरवाइज आपके पास समय कहाँ।
1: शारदा यूनिवर्सिटी का थैंक्स जो उन्होंने हमें इतना ऑनर देके यहाँ बुलाया।
0: थैंक यू सर। सर मेरी बातों बातों में बात निकल कर ये सामने आई कि क्या करें क्या ना करें। कुछ एथिक्स होंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, कुछ स्किल्स जो स्टूडेंट्स डेवलप कर सकता है, तो स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि जब इस फील्ड में आ रहे हैं, इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो किन किन बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़े।
1: देखिए बिल्कुल आपने बहुत जायज सवाल पूछा है। सबसे पहले तो आपको मीडिया एथिक्स पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
0: जी
1: फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है आजकल, आपको उससे बचना है। आपको किसी लाभ लालच में नहीं आना है, आपको बिल्कुल खबर की डेप्थ तक जाना है तब आपको उसको ऑन एयर करना है। ये नहीं कि आपको कोई ने खबर दे दी उसका सर पैर नहीं पता आपने उसको ऑन एयर कर दी, या किसी कोई कितने ही बड़ा रिनाउंड अफसर हो कोई हो, जब तक आप उसकी डेप्थ नहीं पता करेंगे वो स्टोरी की, जब तक आपको उसको ऑन एयर नहीं करना चाहिए।
0: जी
1: दूसरा बात होता है आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी होना चाहिए। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं भले चाहे वो क्राइम जर्नलिज्म हो या कोई और, आपको उसके बारे में जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितने ज्यादा जो करंट न्यूज आ रही है उनको ज्यादा फॉलो करेंगे या उनका फॉलो अप रखेंगे।

0: हस्ती थी, वो कैसे क्राइम की दुनिया में आया। जैसे हम लोग अभी सडनली हमने बहुत सारी सीरीज करी न्यूज 18 ने, शायद न्यूज 18 पहला ऐसा चैनल होगा देश का जो देश के करीबन 8-9 गैंगस्टरों के घर गया। मैं खुद होके आया हूँ। जब हम गए तो हमें पता चला कि वो जो गैंगस्टर थे उनका एक एक पार्ट क्या है लाइफ का, दूसरा पार्ट
1: क्या है,
0: क्राइम की दुनिया से अलग वो क्या है। तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, आप फोन पे जर्नलिज्म नहीं कर सकते। आपको फील्ड पे जाना जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है, जितने ज्यादा कॉन्टेंट बनाएंगे उतना ज्यादा जरूरी है। और आपको अपने फील्ड के बारे में मुझे लगता है जितना ज्यादा सीखेंगे उतने ज्यादा आप अच्छे जर्नलिस्ट बनेंगे आगे आगे।
1: बेहतरीन सर, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे लिसनर्स तक, हमारे श्रोताओं तक, हमारे दोस्तों तक, हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचा दी। मुझे लगता है कि इन बातों को अगर वो गांठ बांध लेंगे तो निश्चित तौर पर इस फील्ड में कहीं रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। सर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की। कभी कभी शिकायत तो होती होगी जब आप देखते होंगे कुछ इंटर्न्स आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हथेली पर सरसों तुरंत उग जाए। आपको कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी भी दिखती होगी कि कहीं वो ललक है, लगन है या नहीं है। तो वो जब आप मिलते हो से तो उस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मतलब मैं इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं मानूंगा। मतलब आज का स्टूडेंट जो है मास कम्युनिकेशन का, उसको बहुत सारी चीजें जो है वो फास्ट चाहिए।
1: जी
0: हम लोग जब इंटर्नशिप करते थे तो हमने 6-6 महीने इंटर्नशिप किए फ्री ऑफ
1: कॉस्ट।
0: और हम अब तो मतलब आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं।
1: जी
0: पहले रिसोर्सेज उतने नहीं थे जिसमें आपको काम करना होता था। अब के इंटर्नस क्या होते हैं, उनको बहुत सडनली 1 महीने के इंटर्नशिप में अगले महीने उनको नौकरी चाहिए।
1: नौकरी।
0: और वो बहुत कम ही स्टूडेंट मैंने ऐसा देखा है जो बहुत दिल से सीखना चाहते हैं चीजों को। हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे इंटर्न्स आते हैं, हमारे साथ उन्हें फील्ड में भी भेजा जाता है, तो उसमें 10 में से केवल 2 इंटर्न्स ऐसे होते हैं जहां हमें जहां लगता है कि जो सीखना चाहते हैं, जो हमसे कुछ पूछना चाहते हैं,
1: उन्हीं को नौकरी ऑफर करते हैं।
0: बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो बस वे बोलते हैं कि सर हमारी शिफ्ट खत्म हो रही है, हमको घर जाना है, हमको मेट्रो स्टेशन पर ड्रॉप करा दीजिए। तो वो लगता है कि वो सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब मैं और भी यूनिवर्सिटी में जाता हूं तो वहां पर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा जो जिनको अपना बेसिक फील्ड का नॉलेज होना चाहिए जो नहीं होता है,
1: नहीं होता।
0: और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने फील्ड के नॉलेज से ज्यादा होता है, मतलब वो सीखना चाहते हैं। तो मैं स्टूडेंट को मतलब उनका मनोबल नहीं गिरा रहा हूं, मतलब बेसिकली बोल रहा हूं कि अगर आप जर्नलिज्म की फील्ड में आए, आपको अगर जर्नलिज्म ही करना है या PR एजेंसी में जाना है या क्रिएटिविटी में जाना है
1: तो तैयार होकर आइए,
0: तैयार होकर आइए,
1: माइंड मेकअप करिए।
0: और अगर आपको कोई भी न्यूज चैनल या अखबार या छोटा डिजिटल प्लेटफॉर्म या आपको इंटर्नशिप का मौका दे रहा है तो आप वहां बहुत ज्यादा सीखिए। आपको सिखाएगा नहीं बड़े चैनल्स में,
1: बिल्कुल
0: आपको खुद सीखना पड़ेगा। आपको वहां पे सीनियर से जाना पड़ेगा कि या आउटपुट है या इनपुट है, असाइनमेंट ऐसा होता है, ग्राफिक्स ऐसे बनते हैं, वॉइस ओवर ये रूम है। जब आप खुद सीखेंगे तो सामने वाला भी आपको सिखाने की कोशिश करेगा, नहीं तो वो तो आप बोलेगा 8 घंटे की शिफ्ट है आप करिए और घर चले जाइए।
1: सही बात है,
0: वो आपको सर्टिफिकेट थमा देंगे 1 महीने।
1: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। डियर स्टूडेंट्स मैं तो ये कहूंगा कि इन बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए, अप्लाई करेगा तो निश्चित तौर पर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी ही नहीं। वक्त अगर आपने अभी देखा तो निश्चित तौर पर आपका वक्त नहीं आएगा, लेकिन जब आप वक्त नहीं देखेंगे तो एक ना एक दिन आपका वक्त जरूर आएगा। दुनिया आपको सलाम करेगी, आपके काम की पूछ होगी। और इन बातों का यहां डिस्कशन करने का मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इन बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं अपने गेस्ट से कि ताकि उन बातों को आप समझ पाएं जो आप अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं। वक्त है यहां पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, और मेरे साथ आनंद तिवारी जी जुड़े हुए हैं न्यूज 18 से। बहुत सारी बातें हो रही हैं, बातों का जो सिलसिला लगातार जारी है सिर्फ सुरुशादा 90.8 FM पर।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में मेरे साथ आज एक खास मेहमान है मिस्टर आनंद तिवारी जी, जो कि न्यूज 18 से ताल्लुक रखते हैं। बहुत पीछे बहुत बड़ा अनुभव है, अलग अलग चैनल में काम किया है और खोजी पत्रकारिता में आपकी महारत हासिल है। बहुत सारी बातें मैंने यहाँ की, इसलिए बातें की ताकि एक खूबसूरत जवाब की मैं उम्मीद रख रहा था, उससे भी बेहतरीन जवाब हमें मिले। सो मैं समझता हूं कि जो स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं तो उन बातों को जब आप अपनाएंगे तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। सर, कभी कभी इस क्षेत्र में जब आप पत्रकारिता के लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं डर घबराहट, जैसे उसके बारे में आपने बताया कि वो सारी चीजें पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी आपके सामने दिक्कतें आई होंगी, आपको लगा कि मैं आज बच ही गया, थैंक गॉड, अदरवाइज तो आज मेरी जान चली जाती। इसके अलावा दूसरी बात भी मैं इसमें जानना चाहूंगा कि जब कोई विक्टिम होता है तो आजकल हम देखते हैं कि किसी को फेस दिखा देते हैं, फिर हमें समझ में आता है कि भाई फेस नहीं दिखाना चाहिए, एथिक्स में है, तो कुछ ऐसी बातें जो हमारे स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए।
1: देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप जो भी जुबिनाइल होगा उसका फेस नहीं दिखा सकते हैं, चाहे वो विक्टिम हो या नहीं हो, इनोसेंट हो। दूसरा, जो रेप विक्टिम होते हैं या जो सेक्सुअल असॉल्ट के जो विक्टिम्स होते हैं, आपको उनका फेस कभी नहीं दिखाना चाहिए, ना उनका नाम। सुप्रीम कोर्ट की तो ये तक गाइडलाइन है कि आप उनके रेडियस के आस पड़ोस के घर के वीडियो फोटो भी नहीं दिखाएं, उनके फैमिली मेंबर्स के किसी के फोटो नहीं दिखाएं। तो बेसिकली रेप और या सेक्सुअल असॉल्ट की खबरों में ये बहुत बचना चाहिए। इसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटना पड़ सकता है और आपके पर्सनल जो आपका प्रोफेशन है उस पे भी आपको
0: हाथ धोना पड़ सकता है।
1: तो बेसिकली इसमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा स्टूडेंट्स को कि जब भी कोई रेप विक्टिम्स हैं या आप सेक्सुअल असॉल्ट वाले विक्टिम्स हैं, उनके इंटरव्यू करने भी अगर आप जाते हैं तो कोशिश करिए कि उनका फेस ब्लर करें या उनका फेस ना दिखाएं। आप बैक साइड कैमरा लगा के और फिर उनका इंटरव्यू करें जिसमें उनका बैक केवल पीठ दिखे और उनकी वॉइस जाए
0: जी।
1: और कोशिश करें कि उनमें उनका नाम नहीं पूछें, उनके फैमिली के बारे में नहीं पूछें, कोई ऐसी चीज नहीं पूछें जिससे कि उनकी फैमिली की आइडेंटिटी रिवील हो। वो एक्चुअली कोर्ट ऑफ कंडक्ट भी है और होना भी नहीं चाहिए, मतलब वो। बाकी दूसरा आपने बताया, जब आपको ऐसी जगह पे रिपोर्टिंग करने जा रहा है जहां आपको लग रहा है कि लाइफ थ्रेट है या आपकी जो इक्विपमेंट है उनको चोट पहुंच सकती है,
0: जान का खतरा हो सकता है,
1: जान का, तो आपको वहां पर ना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। आपको बहुत भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो इन्फॉर्मेशन देना है, अपने चैनल्स को विजुअल दिखाना है। आप किसी ऐसी जगह जाके विजुअल दिखाई जहाँ पे आपको पुलिस प्रोटेक्शन हो या पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हो। जैसे हम भी राइट्स कवर करने जाते हैं तो हम उसी एरिया तक रहते हैं जहाँ पे की
0: फोर्स
1: प्रेजेंस हो, पुलिस फोर्स, क्योंकि वो मीडिया को हार्म नहीं करेगी। कई मौके ऐसे आते हैं जब पुलिस वाले भी पत्रकारों को आपने देखा होगा कि उनको हार्म दौड़ाते हैं, लाठी बढ़ाते हैं, तो आपको वो देखना पड़ेगा, वो आपका दिमाग आपको ओपन रखना पड़ेगा। अभी वक्त की नजाकत क्या, उस हिसाब से आपको जर्नलिज्म करना, ये नहीं कि आप जुनून में अंदर घुस गए उस समय पत्रकारिता में वो
0: शहीद हो जाएंगे।
1: हाँ, अपने इक्विपमेंट का भी ध्यान रखना, अपना भी ध्यान रखना। तो जब राइट्स वाली स्थिति आए तो आप एक ऐसी जगह पे जाके लाइव करें जहां से कि आप व्यूअर्स को वो विजुअल भी दिखा सके और अपनी बात भी रख सकते हैं और खुद भी सेफ होकर अपना रिपोर्टिंग करें, चाहे वो आप बाढ़ की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ या जो दिल्ली में या और भी जगह जो दंगे हुए उनकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत बड़ी आग लग गई हो, या आप कोई ऐसी जगह चले गए हो जहाँ बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है, पब्लिक भड़क सकती है,
0: ध्यान रखना,
1: ये आपको रखना पड़ेगा। ये ऑफिस भी लगातार बताता है, आप न्यूज चैनल्स भी एथिक्स के बारे में बताते हैं और ये रिपोर्टर को फील्ड में या कैमरामैन जो आपके स्टूडेंट जो कैमरा पर्सन बनना चाहते हैं आगे, उनका इंटरेस्ट वीडियोग्राफी में है, स्टिल फोटोग्राफी में है, तो उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से करना है। फोटोग्राफी में भी है कि आप माइनर के फोटो ना लें, छोटे बच्चों के फोटो ना दिखाएं चैनल्स पे। अभी बहुत सारी न्यूज में ऐसा होता है जब छोटे बच्चों के फोटो दिखा दिए जाते हैं, सोशल मीडिया बढ़ चढ़ कर दिखाता है, रेप विक्टिम के फोटो दिखाता, वीडियो दिखाता।
0: सर, आप इस बात को हम को रिलेट कर सकते हैं, अभी शिवाय की एक घटना घटी थी, उस बच्चे का पिक्चर नहीं आना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं सोच रहा हूँ तो आप मुझे भी करेक्ट करेंगे, क्योंकि वो अगर पिक्चर आएगी तो हो सकता है कि वो दिक्कतें उसके आने वाले फ्यूचर में भी हो सकती हैं, क्योंकि शिवाय का ग्वालियर की घटना थी, बच्चे का अपहरण होता है उसके बाद वो मीडिया के सामने होता है।
1: बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, किडनैपिंग की तो खबरें नहीं दिखाना चाहिए। किडनैपिंग की न्यूज तब आपको दिखाना चाहिए जब या तो बच्चा रिकवर हो जाए या एक्यूज जब अरेस्ट हो जाए, क्योंकि उससे बच्चे की लाइफ पर थ्रेट हो सकता है। आप एक न्यूज चला देंगे वो पूरे देश में चली जाएगी, किडनैपर्स डर के हो सकता है बच्चों को मार दें, और बहुत सारे ऐसे केस में हुआ है जब किडनैपर्स तुरंत जब उनको लगता है कि मीडिया में न्यूज आ गई तो वो उस बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने जिसमें विक्टिम्स की मर्डर कर दिए गए हैं, बाद में उनकी डेड बॉडी रिकवर होती है। तो ये पुलिस भी इसमें बहुत कोशिश करती है कि मीडिया को सारी चीजें लीक ना हो, और अगर आपकी भी एथिक्स है कि आपको ऐसी चीजें नहीं चलाना चाहिए जिससे कि कोई की लाइफ थ्रेट आपकी न्यूज से अगर हो रही है तो।
0: बहुत अच्छा सर। लिसनर्स, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये कि इन बातों को जान लीजिए, समझ लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, प्यार का एक माहौल बना के चलेंगे, सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। और जो ये बातें बताई गई हैं, इन बातों को जरूर जानिएगा, समझिएगा। और वक्त का इशारा हो चुका है, वक्त का जब इशारा होता है तो मैं होता हूँ 9:11। सर, दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स तक, स्टूडेंट्स तक पहुँचाई, इस बात के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सर।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके स्टूडेंट्स का भी, रेडियो स्टेशन का।
0: थैंक यू सर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। 01204060205 पर कॉल कर आप हमें बता सकते हैं कि ये चर्चा, ये वार्ता, ये इंटरव्यू कैसा लगा। मुझे यानी गगन को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: चलो अब तुम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली, अब टेंशन वेंशन छोड़ दे, बच्चा हो जा फुल्ली।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है, तो फिर कहीं देर ना हो जाए। कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: क्या आपको बुखार आ रहा है?
1: ये बुखार डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का हो सकता है।
0: बुखार होने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं।
1: सिर, हाथ, पांव और पेट पर सामान्य पानी की पट्टी रखें।
0: बुखार के दौरान पानी, शिकंजी, ताजी फलों का रस और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें।
1: हल्के सूती कपड़े पहने और कमरे को ठंडा रखें।
0: डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा का सेवन ना करें। झोला छाप चिकित्सकों से बचें।
1: संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर
0: 1800-180-5145 पर कॉल कर सकते हैं।
1: याद रखना, बुखार में देरी
0: पड़ेगी भारी।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुरुशाद 90.8 FM द्वारा ये जानकारी जनहित में जारी।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
6: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें? वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है? राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से

जन धन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
1: जी
0: प्लीज कैरी ऑन।
1: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
0: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
1: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
0: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका दोस्त शशि कपूर। दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने बात की थी गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS और पौष्टिक भोजन के बारे में। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज का सवाल है, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया निकल आए तो क्या करना चाहिए? क्या केवल कमजोरी दूर करना ही लक्ष्य है या माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण, IVFCM क्या है और किन गर्भवती महिलाओं के लिए डॉक्टर इस उपचार पर विचार करते हैं? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं आपके जाने पहचाने सिहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी। दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से।
1: भाई शशि कपूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से, बिकॉज क्योंकि जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं गदगद हो जाता हूँ, या यूं कहेंगे गार्डन गार्डन हो जाता हूँ और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यूं समझ लीजिए कि स्वागत कम ही मिलता है।
0: तो स्वागत आपका हो चुका है और अब चलते हैं सवालों की ओर।
1: जी
0: तो सिहतिया जी, शुरुआत एक आसान सवाल से करते हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने हल्के, मध्यम और गंभीर एनीमिया का जिक्र किया था, क्या एक बार फिर सरल भाषा में समझाएंगे इन सबको?
1: जरूर। जब खून की जांच में हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है, और 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो इसे मध्यम एनीमिया कहा जाता है, और 7 ग्राम से कम हो तो ये गंभीर एनीमिया माना जाता है। दोस्तों,
0: यानी जितना कम हीमोग्लोबिन उतनी ज्यादा चिंता।
1: हाँ, क्योंकि इसका असर गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों पर पड़ सकता है।
0: तो क्या मध्यम और गंभीर एनीमिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं। समय पर पहचान और इलाज बहुत जरूरी है।
0: तो दोस्तों, आगे भी बातें होती रहेंगी सिहतिया सिंह जी से और टीकन देवी से, बहुत सारी बातें जानेंगे, लेकिन यहाँ पर सुनते हैं एक छोटी सी कहानी और ये कहानी सुना रही हैं आपकी अपनी टीकन भाभी, आइए सुनते हैं।
2: ये कहानी है सुनीता की। सुनीता 7वें महीने की गर्भवती थी। कुछ दिनों से उसे बार बार चक्कर आते थे, थोड़ी दूर चलने पर सांस फूलने लगती थी, घर का काम भी मुश्किल लगने लगा था। घर वाले सोचते थे कि गर्भावस्था में ऐसा तो होता है, लेकिन एक ANC जांच के दौरान खून की जांच हुई, रिपोर्ट में पता चला कि उसे मध्यम एनीमिया है।
0: तो भाभी, फिर आगे क्या हुआ?
2: स्वास्थ्य केंद्र में उसकी स्थिति को समझा गया, आगे की सलाह दी गई, परिवार को भी बताया गया कि ये केवल कमजोरी नहीं बल्कि इलाज की जरूरत वाली स्थिति है, यही वजह है कि नियमित जांच बहुत जरूरी है।
0: अच्छा सिहतिया जी, अगर किसी गर्भवती महिला में मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया जाता है तो डॉक्टर किन बातों पर ध्यान देते हैं?
1: भाई, डॉक्टर पहले स्थिति की गंभीरता को देखेंगे। अगर एनीमिया आयरन की कमी से है तो उपचार उसी हिसाब से तय होगा। हल्के एनीमिया के मामलों में डॉक्टर इलाज के लिए आयरन की गोली दे सकते हैं, लेकिन मध्यम या गंभीर एनीमिया में आयरन गोली से कम असर या जल्दी सुधार की जरूरत की स्थिति में डॉक्टर IV यानी कि 4th FCM जैसे नस के रास्ते दिए जाने वाले आयरन उपचार पर विचार कर सकते हैं।
0: यानी हर गर्भवती महिला को IVFCM नहीं दिया जाता?
1: बिल्कुल नहीं। IVFCM हर किसी के लिए नहीं है, ये एक चिकित्सीय निर्णय है जो जांच और मूल्यांकन के बाद लिया जाता है।
0: अच्छा सिहतिया भैया, अब जरा जो IVFCM की आप बात कर रहे हैं तो इसको जरा आसान भाषा में समझाइए ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी ये बात समझ में आ जाए।
1: भाई देखिए, कई बार लोग सोचते हैं कि IVFCM कोई अलग दवा है या कोई बहुत जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरल भाषा में समझें तो ये शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने का एक तरीका है जिसमें आयरन नस के रास्ते दिया जाता है। जब किसी गर्भवती महिला में जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाया जाता है या डॉक्टर को लगता है कि तेजी से सुधार जरूरी है, तब इस विकल्प पर विचार किया जा सकता है।
0: यानी ये सामान्य कमजोरी का इलाज नहीं है।
1: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल थकान महसूस होने से किसी को IVFCM नहीं दिया जाता। पहले जांच होती है, खून की रिपोर्ट देखी जाती है, महिला की स्थिति समझी जाती है, इसके बाद डॉक्टर निर्णय लेते हैं।
0: तो सेहतिया भैया, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि IVFCM हमेशा जांच पर आधारित उपचार है।
1: बिल्कुल सही, यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं कि पहले जांच, फिर सलाह और फिर उपचार।
0: और क्या ये सही है कि IVFCM अपेक्षाकृत कम समय में दिया जा सकता है?
1: हाँ, स्वास्थ्य सुविधा पर डॉक्टर और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में ये दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय तक महिला को देखा भी जाता है ताकि सब कुछ सामान्य रहे।
0: क्या ये अस्पताल में भर्ती होकर ही कराया जाता है?
1: जरूरी नहीं, लेकिन ये हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में स्वास्थ्य सुविधा पर ही किया जाता है।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने मन से ये उपचार करवाना ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल नहीं, सही रास्ता हमेशा जांच, डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख है।
2: मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी, कई बार परिवार डर जाता है कि ट्रिप लगी है तो बीमारी बहुत गंभीर होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। IVFCM को एक प्रभावी उपचार विकल्प के रूप में समझा जा सकता है, लेकिन यह केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में दिया जाता है।
0: टीकन देवी जी, बहुत अच्छी बातें कही आपने। अब सियतिया सिंह जी, एक बात और, कई श्रोता ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आखिर IVFCM पर विचार क्यों करते हैं?
1: क्योंकि मध्यम या गंभीर अनीमिया केवल कमजोरी का विषय नहीं है, ये माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जब डॉक्टर को लगता है कि आयरन की कमी को जल्दी और प्रभावी तरीके से ठीक करना जरूरी है, तब वे IVFCM जैसे विकल्प पर विचार कर सकते हैं।
2: और मैं यहाँ परिवारों से कहना चाहूंगी कि अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे लेकर डर या अफवाहों में ना पड़े। पहले पूरी जानकारी लें, सवाल पूछें, स्वास्थ्य कर्मी की बात समझें।
0: सियतिया भैया, क्या IVFCM का उद्देश्य केवल गर्भवती महिला की कमजोरी दूर करना है?
1: नहीं, इसका बड़ा उद्देश्य माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में योगदान देना है। जब एनीमिया का समय पर इलाज होता है तो गर्भावस्था को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।
0: यानी फायदा केवल माँ को नहीं, बच्चे को भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल, अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल टीकन देवी से जानना चाहूंगा, इलाज में परिवार की क्या भूमिका है?
2: बहुत बड़ी भूमिका है। पहला, गर्भवती महिला की कमजोरी को गंभीरता से लें। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से महिला को ले जाएं, उसमें देरी ना होने दें। तीसरा, जांच में साथ जाएं। चौथा, गोली समय पर और सही तरीके से लेने में मदद करें। पांचवा, किसी परेशानी की स्थिति में स्वास्थ्य कर्मी से बात कराएं। छठा, अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में मदद करें। सातवा, घर में अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएं। और आठवा, महिला को उसकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए दोष न दें।
0: सचमुच एनीमिया का इलाज केवल स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी नहीं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी है। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जाता है तो क्या आगे भी निगरानी होती है?
1: हाँ, इलाज के बाद भी फॉलोअप बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि डॉक्टर से मुलाकात, महिला की पुनः जांच होगी, आवश्यकता होने पर आगे की सलाह दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी में होती है।
0: यानी उपचार के बाद भी संपर्क बनाए रखना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: चलिए, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले IVFCM से जुड़ी कुछ आम धारणाओं की बात करते हैं। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जा रहा है तो उसकी हालत बहुत खराब होगी?
1: गलत। IVFCM देने का निर्णय जांच और चिकित्सीय आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है। केवल ड्रिप लगने का मतलब ये नहीं कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है।
0: IVFCM हर गर्भवती महिला को लेना चाहिए?
2: गलत। IVFCM हर महिला के लिए नहीं है, ये केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जाता है जहां डॉक्टर को इसकी आवश्यकता दिखाई देती है।
0: अगर IVFCM लग गया तो आगे किसी जांच या फॉलोअप की जरूरत नहीं रहती?
1: गलत। फॉलोअप बहुत महत्वपूर्ण है। उपचार के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र की सलाह के अनुसार जांच और निगरानी की जाती है।
0: IVFCM घर पर भी लगवाया जा सकता है?
2: गलत। ये हमेशा स्वास्थ्य सुविधा पर ट्रेंड हेल्थ वर्कर और डॉक्टर्स की निगरानी में ही दिया जाता है।
0: अगर किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को IVFCM दिया गया था तो मुझे भी वही उपचार लेना चाहिए?
1: गलत। हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग होती है। उपचार हमेशा उसकी जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय होता है।
0: बिल्कुल। तो श्रोताओं, इसी के साथ प्रोग्राम समाप्ति की ओर है, पर चलते चलते आज की चर्चा से तीन महत्वपूर्ण बातों को याद रखिए। पहली, गर्भावस्था में कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने को नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरी, नियमित ANC जांच और खून की जांच कराइए। तीसरी, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया मिलता है तो स्वास्थ्य केंद्र की सलाह का पालन कीजिए। कुछ स्थितियों में डॉक्टर IVFCM जैसे उपचार पर विचार कर सकते हैं।
2: और मेरी तरफ से एक संदेश, खून की कमी को लंबा मत कीजिए, समय पर जांच कराइए, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए और गर्भवती महिला को परिवार का पूरा सहयोग दीजिए।
1: याद रखिए, समय पर पहचान और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम संभव है दोस्तों।
0: बिल्कुल। तो सेहतिया भैया और टीकन देवी जी कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रसव के बाद की अवस्था यानी PNC के दौरान एनीमिया पर, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी माँ का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है। और अब दीजिए अनुमति, लेकिन सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। फिलहाल के लिए नमस्कार।

0: मैं हूँ गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ। अपने प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। बात होगी नवजात शिशुओं की सुरक्षा। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे पैदा होते ही अचानक बीमार पड़ जाते हैं और परिवार घबरा जाता है। कुछ लोग घर के नुस्खों में लग जाते हैं, कुछ देरी कर देते हैं और कई बार ये देरी बच्चे के लिए खतरनाक हो जाती है। इसलिए आज हमने बुलाया है अपनी गांव-गांव की ज्ञान की पिटारी हमारी टीकन भाभी को। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से भाभी।
1: अरे धन्यवाद भाई और धन्यवाद रेडियो के उन सभी श्रोताओं को जो बहुत ही जरूरी विषय के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका ये भी शुक्रिया करूंगी कि आपने बहुत जरूरी विषय उठाया है। आज नवजात बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उनको जरा सा भी खतरा लगे तो तुरंत विशेषज्ञ के इलाज की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल टीकन देवी, सही जानकारी हो तो परिवार बच्चे की जान बचा सकता है। इसलिए आज हम बात करेंगे SNCU की। पर ये SNCU है क्या और क्यों जरूरी है भाभी?
1: हाँ मैं ये आपको बताऊंगी और मैं अपने सभी श्रोताओं को ये जानकारी देना चाहूंगी जो कि समुदाय से हमसे जुड़े हुए हैं और हमारा सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा और स्मार्ट मिलकर इस श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि समाज के हर विषय पर जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है आप लोगों को पूरी जानकारी हो। तो आज बाबू मैं आपको बताऊंगी कि ये SNCU क्या होता है। सबसे पहले SNCU का मतलब है स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट, यानी खास तरह का यूनिट है जो जिला अस्पताल या मेडिकल सेंटर में होता है। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर और नर्सें खास मशीनें बच्चे की निगरानी करती हैं। यह यूनिट उन बच्चों के लिए है जो समय से पहले पैदा हो जाएं, कम वजन के हों, सांस नहीं ले पा रहे हों या सांस लेने में दिक्कत हो, पीलिया संक्रमण या तेज बुखार से ग्रसित हों, जो बच्चे दूध नहीं पी पा रहे हैं या बहुत ज्यादा ठंडे या गर्म हों, उनके लिए भी यह यूनिट है। SNCU को ऐसे समझो नवजात बच्चों की ICU, समझ रहे हैं ना भैया?
0: जी जी।
1: जहाँ हर बच्चा विशेषज्ञों की निगरानी में सुरक्षित रहता है।
0: अच्छा, मतलब गांव के लोग जिसे नाजुक बच्चा कहते हैं वही बच्चा SNCU में ले जाना चाहिए?
1: हाँ, गांव के लोग जिसे नाजुक बच्चा कहते हैं उसे SNCU में जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि नाजुक का मतलब सिर्फ छोटा होना नहीं है। कई बार बच्चा बिल्कुल ठीक लगता है पर लक्षण अंदर ही अंदर बढ़ रहे होते हैं। सबसे खतरनाक बात तो यही है।
0: टीकन देवी, ये तो परिवार को जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए।
1: हाँ, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ आज भैया, नवजात में नीचे दिए गए किसी भी लक्षण को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसे तुरंत SNCU यूनिट में भेज देना चाहिए। पहला लक्षण, दूध ना पीना या बहुत कम पीना, बच्चा बहुत सुस्त लगे या उसके हाथ पैर ढीले लगे, तेज सांस यानी 60 से ज्यादा प्रति मिनट सांस लेने में मुश्किल होना, धीरे धीरे सांस आना या छाती धसना, लगातार रोना या उल्टा हो जाना या बहुत ज्यादा सोना, जरा जरा सी देर में दौरे पड़ना या फिट्स, शरीर का बहुत गर्म या बहुत ठंडा हो जाना, नाभि में पस पड़ जाना, लालिमा आ जाना या उससे बदबू आना, गंभीर पीलिया खासकर 24 घंटे के भीतर बार बार उल्टी आना और दूध पी के वापस निकालना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं। अगर किसी नवजात में दिखाई दें तो बिल्कुल हल्के में ना लें, उसे तुरंत SNCU यानी बच्चों की जो ICU है ना, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की
0: थी,
1: स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में ले जाना चाहिए। वहाँ बच्चा डॉक्टर नर्स और खास मशीनों की निगरानी में रहता है जिससे बच्चे के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है।
0: बिल्कुल आपने सही बात कही और मैं तो डर ही गया था कि जिस तरीके से आप लक्षण बता रहे हैं तो गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन आपने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये अगर लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों एक बात याद ये रखना कि नवजात में देरी का मतलब खतरा है, तो इसलिए एक मिनट भी इंतजार मत करना। बिल्कुल श्रोताओं, इसे दिल में बांध लीजिए, या यूं कहें कि गांठ बांध लीजिए। खतरे का एक भी लक्षण मतलब सीधा SNCU। टीकन देवी, जब परिवार SNCU पहुंचता है तो वहां क्या क्या होता है?
1: हाँ, जब परिवार SNCU पहुंचता है तो ये पूरा वैज्ञानिक और सुरक्षित इलाज का केंद्र है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं एक एक सेवा के बारे में आपसे बात करती हूँ। सबसे पहली जो सेवा है जो कि SNCU में दी जाती है, वार्मर, यानी नवजात बच्चा जब अपना तापमान नहीं संभाल पाता तो उसे वार्मर में रखा जाता है, जिससे उसका तापमान संतुलित किया जा सके। ऑक्सीजन और CPAP, अगर बच्चे को तुरंत सांस लेने में मुश्किल है तो CPAP से फेफड़ों को मदद मिलती है, यानी बच्चा सांस धीरे धीरे ले पाता है और सही कंडीशन में पहुंच पाता है डॉक्टर्स की निगरानी में। तीसरा, दवाई।

0: उल्टा निकाल रहा है तो एनजी ट्यूब से माँ का दूध बच्चे को दिया जाता है जो कि उसके लिए बेहद कामगार साबित होता है। KMC यानी कंगारू मदर केयर, माँ या पिता बच्चे को सीने से चिपकाते हैं और बच्चे को ऐसा लगता है जैसे माँ उसके बेहद करीब है और बच्चा जल्दी ठीक होने लगता है। निरंतर निगरानी, हार्ट रेट, ऑक्सीजन, तापमान, वजन, हर घंटे में जांच, ये सब होता है इस केंद्र में। परिवार को सलाह दी जाती है कि कैसे दूध पिलाया जाए, कैसे बच्चे की साफ सफाई रखी जाए, कब बच्चे के पास वापस आना है, कब बच्चे के पास समय बिताना है, फॉलो अप डिस्चार्ज के बाद कब दिखाना है, ये भी डॉक्टर्स आपको बताते हैं। वहाँ सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है, इतना भी लोगों को अंदाजा नहीं होगा, लेकिन ये सुविधाएं सरकार की ओर से दी जा रही हैं, जिसका हमारे समुदाय के लोगों को जरूर लाभ उठाना चाहिए।
1: जी वाह, इतना सब कुछ एक ही जगह है, लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं होगा, है ना?
0: हाँ बिल्कुल। एक बात कहूँ भैया?
1: जी।
0: सबसे खास बात तो ये है कि सारी दवाएं, सारी सुविधाएं, डॉक्टर और नर्स की सारी निगरानी बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त मतलब आपको बस जानकारी होनी चाहिए और आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: मुफ्त? सच में मुफ्त? तो लोग समझते हैं कि अस्पताल में बहुत खर्चा होगा।
0: नहीं जी, ऐसा लोग सोचते हैं पर ऐसा है नहीं। सरकार ने नवजात के इलाज को मुफ्त रखा है और सरकार इस कैंपेन को सामुदायिक रेडियो और स्मार्ट के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा रही है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या शामिल है। पहला, भर्ती। भर्ती होने पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दवाइयाँ, फोटोथेरेपी, वार्मर, CPAP टेस्ट, दूध पिलाने की सलाह और 108 एम्बुलेंस। गरीबी या पैसे की वजह से किसी का इलाज ना रुके, यही सरकार का साफ और सीधा संकेत है।
1: सीधा संकेत है, सीधा संदेश है। तो टीकन देवी, अस्पताल तो करेगा ही, लेकिन परिवार क्या करे?
0: देखो, परिवार की भूमिका बहुत बड़ी होती है। परिवार को सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि सरकार की तरफ से नवजात के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। सबसे पहले बच्चे को कोई भी दिक्कत लगे तो अस्पताल ले जाएं, डॉक्टर की दवा बीच में ना रोकें, KMC जरूर करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, हाथ धोकर ही बच्चे को छुएं, 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को माँ का दूध पिलाएं, फॉलो अप की तारीख को कभी ना छोड़ें, डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहें।
1: सही बात है। घर की जिम्मेदारी घर वालों की?
0: जी, घर वालों की जिम्मेदारी बहुत बनती है। आज भाई, पैटर्न और लो बर्थ वेट, बच्चों पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, ये बच्चे ठंड बहुत जल्दी पकड़ते हैं, इन्हें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, बार बार दूध चाहिए और वजन धीरे धीरे बढ़ता है। KMC तो ऐसे बच्चों के लिए वरदान है।
1: टीकन देवी, कई बार बच्चे इसलिए भी बीमार होते हैं क्योंकि गर्भावस्था में समस्याएं थी?
0: हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को जरूर करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए मैं अभी अपने सभी श्रोताओं को बताती हूँ।
1: जी।
0: 4ANC चेकअप, IFA की गोलियाँ, TT TD वैक्सीनेशन, रक्तचाप या शुगर की जांच, संस्थागत प्रसव। अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा SNCU में जाने से बच सकता है, यानी बच्चा ICU में, जो कि बच्चों की यूनिट होती है, उसमें जाने से बच सकता है।
1: जी, अगर बच्चा अचानक बीमार हो जाए तो क्या करें टीकन देवी?
0: देखो, बच्चा अगर अचानक से बीमार पड़ जाए तो उसके माता पिता परिवार के सदस्यों को सीधे 108 पर फोन करके एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। ऑक्सीजन, ट्रेंड स्टाफ, स्ट्रेचर और गर्माहट देने के सभी सामान उसके अंदर रहते हैं। बच्चा जब SNCU से ठीक होकर आता है तब भी सतर्कता बेहद जरूरी है। स्तनपान, दवा समय पर, भीड़, संक्रमण से बचाना, साफ पानी और सफाई का ध्यान रखना, और कोई भी खतरा दिखे या कोई ऐसा लक्षण दिखे जिससे बच्चे को परेशानी हो रही है तो तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाना।
1: मतलब इलाज सिर्फ SNCU तक नहीं, घर पर भी जिम्मेदारी उतनी ही?
0: बच्चा परिवार की जिम्मेदारी पहले है, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की और फिर समाज की। परिवार को बड़ी जिम्मेदारी से बच्चे के

0: लालन पोषण पर ध्यान देना चाहिए। सरकार द्वारा मिल रही सभी सुविधाएं जो कि नवजात के लिए जरूरी हैं, उनकी भी जानकारी परिवार को होनी चाहिए। अब जब आप परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार और समुदाय मिलकर बहुत कुछ बदल सकते हैं। जैसे परिवार, समुदाय और सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित जागरूकता कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं को ANC के लिए प्रेरित कर सकते हैं। संस्थागत प्रसव बढ़ाएं, इस बारे में भी बात की जा सकती है। नवजात के खतरे के लक्षण सबको सिखाएं और बताएं कि अगर नवजात में लक्षण दिखे तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाकर एडमिट करें। नाभि पर तेल और घी लगाने की कभी सलाह न दें। स्वच्छता बढ़ाएं। मैं तो यही कहूंगी, जब सोच बदलती है तो पूरा गांव स्वस्थ होता है, और गांव स्वस्थ होता है तो समाज स्वस्थ होता है, और जब समाज स्वस्थ होता है तो पूरा देश स्वस्थ होता है। तभी सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका मोटिव पूरा होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नवजात बच्चा बहुत नाजुक होता है, बीमारी अचानक बढ़ सकती है, इसलिए समय पर इलाज जीवन को बचाता है। SNCU आपकी सरकारी सुविधा है, इसे जानिए, पहचानिए और जरूरत पड़ने पर तुरंत पहुंचिए। आपका एक कदम एक बच्चे की पूरी जिंदगी बचा सकता है।
1: धन्यवाद टीकन देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ श्रोताओं का भी, आज आपने एक जीवन रक्षक जानकारी सुनी, इसे याद रखिए और अपने गांव में फैलाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे, देख लो 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है। तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है। इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी। जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी ला इलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन.

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज भी हमारे गांव में शहर में ऐसे नागरिक मौजूद हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो खुद का घर बनवाने में और पुराने घर की मरम्मत करवाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना चलाई जा रही है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप ग्रामीण आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आपका जो गांव है वो शहरी क्षेत्र में आता है तो आप शहरी आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने और घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के अंतर्गत देश के अनेक राज्यों में लाखों नागरिकों को पक्के मकान बनवाने के लिए आवास योजना की राशि उनके बैंक खातों में दी भी जा चुकी है। और अब किसान मित्रों बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता की। तो किसान मित्रों, ऐसे परिवार जो मिट्टी के कच्चे घरों में निवास कर रहे हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। और ऐसे नागरिक जिनको अभी तक भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कोई भी आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है, देश के ऐसे नागरिक जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो उनका पक्का घर बनवाने के लिए इस योजना के अंतर्गत पैसा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को आवास के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इससे महिलाएं खुद के घर की मालिक बनकर समाज में सशक्त हो सकती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जिन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है उसमें आधार कार्ड, आय का प्रमाण पत्र, BPL सूची का फोटोकॉपी, आवेदनकर्ता का बैंक खाता, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। तो हमारे वो गरीब बहन भाई जिनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है वो अपने नजदीक जन सुविधा केंद्र पर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। और आइए अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन की तरफ और आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं योगेंद्र निमचाना।

किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अधिक उत्पादन के लिए खेती में अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे खेती में अत्यधिक लागत आ रही है और जल, भूमि, वायु और वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। इसीलिए इस प्रकार की सभी समस्याओं से निपटने के लिए जैविक खेती करने की सिफारिश हमारे कृषि वैज्ञानिक करते हैं। भारत सरकार भी इस खेती को अपनाने के लिए प्रचार प्रसार कर रही है, साथ ही राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन भी चला रही है, जिसके अंतर्गत जैविक खेती करने वाले किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है और जैविक खेती करने के तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं। किसान मित्रों, रासायनिक खादों के बेहिसाब प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बचाने में जैविक उर्वरक काफी कारगर हैं। तो किसान मित्रों, आप भी जैविक खेती करके कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए बस जरूरत है आपको जागरूक होकर जैविक खेती करने के तौर तरीके से भली भांति परिचित होने की। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती है, इसके साथ ही आपको आय अधिक प्राप्त होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं, जिसकी वजह से आप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान मित्रों, आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यंत लाभदायक है। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही जैविक खेती की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और किस्सा रहेगा रामायण का।

किसान मित्रों, अभी आप ज्ञानेंद्र सरधाना से ये रागनी सुन रहे थे, किस्सा था रामायण का। किसान मित्रों, ऐसा देखा गया है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो दुधारू पशुओं पर तो बहुत अधिक ध्यान देते हैं, मगर जो नवजात और छोटे पशु हैं उन पर इतना ध्यान नहीं देते और उनके प्रबंधन को महत्वपूर्ण नहीं समझते, क्योंकि उनसे उन्हें कोई तत्कालिक लाभ नहीं मिलता है। और किसान मित्रों, आपको बता दें कि एक शोध से ये बात सामने आई है कि उचित प्रबंधन के अभाव में 15-20% जो नवजात पशु होते हैं वो जन्म के 1 महीने की अवधि में मर जाते हैं। तो सभी पशुपालक भाइयों को ये बात समझनी चाहिए कि पशुधन का भविष्य नवजात पशु की देखभाल और प्रबंधन पर निर्भर करता है, और प्रत्येक पशुपालक को नवजात और छोटे पशुओं के प्रबंधन संबंधी सभी बारीकियों को ध्यान में रखना चाहिए। किसान मित्रों, नवजात पशुओं को दिया जाने वाला सबसे पहला और सबसे जरूरी आहार है माँ का पहला दूध, मतलब खीस। खीस का निर्माण माँ के द्वारा नवजात पशु के जन्म से 3-7 दिन बाद तक किया जाता है, और ये नवजात पशु के लिए पोषण और तरल पदार्थ का प्राथमिक स्रोत होता है। ये नवजात पशु को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है जो उसे संक्रामक रोगों और पोषण संबंधी कमियों का सामना करने की क्षमता देता है। यदि खीस उपलब्ध हो तो जन्म के बाद पहले 3 दिनों तक नवजात पशु को खीस पिलाते रहना चाहिए। जन्म के बाद खीस के अतिरिक्त नवजात पशु को 3-4 सप्ताह तक माँ के दूध की आवश्यकता होती है। उसके बाद नवजात पशु वनस्पति से प्राप्त माँट और शर्करा को पचाने में सक्षम हो जाता है। नवजात पशुओं को खिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को अच्छी तरह साफ रखना चाहिए। इन्हें और खिलाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य वस्तुओं को साफ और सूखे स्थान पर रखना चाहिए। नवजात पशुओं के रहने के स्थान पर अच्छा बिछौना होना चाहिए ताकि आराम से और सूखी अवस्था में वो रह सकें। लकड़ी के बुरादे या पुआल का इस्तेमाल बिछौने के लिए सबसे अधिक किया जाता है। नवजात पशु के ऐसे बाड़े जो घर के बाहर हों, आंशिक रूप से ढके हुए और दीवार से घिरे होने चाहिए ताकि धूप की तेज गर्मी या ठंडी हवा या फिर यूं कहें वर्षा और तेज हवा से नवजात पशु की सुरक्षा हो सके। नवजात पशुओं को बीमारियों से बचाकर रखना उनकी आरंभिक वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इससे उनकी मृत्यु दर कम होती है। साथ ही बीमारी से बचाव बीमारी के इलाज की तुलना में कम खर्च में किया जा सकता है। नवजात पशुओं का नियमित रूप से निरीक्षण करें, उन्हें ठीक तरह से खिलाएं और उनके रहने की जगह और परिवेश को स्वच्छ रखें। तो हमारे

कोशिंदर खदाना द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं और 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: तो आइए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण मुहिम के तहत जो एक जानलेवा टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए सुनो शारदा रेडियो स्मार्ट के माध्यम से सभी देशवासियों को एक उपदेश रागनी के द्वारा सुनाते हैं, जिसके गायक कलाकार कृष्ण कुमार फरीदाबाद हारमोनियम पर संगति कर रहे हैं, नेपाल सिंह शर्मा जी ढोलक प्रसाद दे रहे हैं, मनोज शर्मा जी। तो आइए सुनते हैं एक महत्वपूर्ण संदेश।

तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे टीवी जन जागरूकता पर ये उपदेश। गायक कलाकार थे कृष्ण कुमार और संगत कलाकार थे हारमोनियम पर नेपाल सिंह शर्मा और ढोलक पर साथ दे रहे थे मनोज कुमार शर्मा जी। तो गायक कलाकार कृष्ण कुमार और उनके संगत साथियों को उपदेश गायन के माध्यम से टीबी जन जागरूकता फैलाने के लिए सुनो शारदा 90.8 एफएम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथियों, आपसे एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा 90.8 एफएम और स्मार्ट मिलकर मुहिम चला रहे हैं सेहत सही लाभ कही। तो सुनते रहिए।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब होटल मॉल स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ओले ओले ओले, ओ शोनक। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, RJ बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: क्या आपको पता है डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारी कैसे फैलती है? ये फैलती है मच्छरों के काटने से।
2: खुद को और अपने परिवार को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय।
1: हमेशा मच्छरदानी में ही सोएं।
2: दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं।
1: मच्छर अगरबत्ती जैसी मच्छर रोधी उपायों को जरूर अपनाएं।
2: पूरी बांह वाले कमीज, पैंट और मोजे पहने
1: और मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए
2: पानी की टंकी को पूरी तरह ढक कर रखें।
1: घर के भीतर तथा आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें।
2: फ्रिज के पीछे नीचे की तरफ लगी हुई ट्रे, टायर और खुले में रखे कोई भी बर्तन में जमा पानी को नाली में बहा दें।
1: कूलर और गमले वगैरह को हर सप्ताह खाली करके सुखाएं
2: और गड्ढों को मिट्टी से भर दें जिससे उसमें पानी जमा ना हो।
1: याद रखना, बुखार में देरी
2: पड़ेगी भारी। संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर
1: 1800-180-5145 पर कॉल करें। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट विच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है, उनके हक की बात करता है, और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष श्रृंखला के तौर पर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसमें हमें सहयोग मिला है स्मार्ट संस्था का, और जिन विषयों पर समय दर समय हम बात कर रहे हैं वो विषय हैं जैसे कि मेरी पत्नी, मेरा अधिकार, दहेज प्रथा या हत्या, कैसे बचे मनचलों से, कच्ची उम्र की शिक्षा, माँ मुझे बाहर जाना है, पितृसत्ता, असमान व्यवहार, असमान दीक्षा, खतना धर्म नहीं दर्द, बालिका या वधु, और बेटियां हैं तो वंश है यानी प्रजनन अधिकार। तो इस तरीके से हर एक मुद्दे पर हम खुलकर बातें कर रहे हैं, और हम आपको बताना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में हमें दूसरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है, और यह भी सच है कि दूसरे स्टेशन हमारे खास प्रोग्राम को अपने यहां से ऑन एयर करते हैं। इसी समझौते के तहत हम दूसरे स्टेशन के कार्यक्रम आज यहां से ऑन एयर कर रहे हैं, जिसमें हमें सहयोग मिल रहा है लाउड स्पीकर 90 FM का। आइए सुनते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम।
6: हिंसा को नो।

0: नमस्कार। आज के हमारे कार्यक्रम हिंसा को नो में आप सबका स्वागत है और ये कार्यक्रम हम स्मार्ट की सहायता से प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंसा एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही एक डर सा लगता है। जरूरी नहीं कि हिंसा मारपीट या शारीरिक प्रताड़ना ही हो। कई बारी हमारे साथ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम हिंसा के रूप में नहीं मानते, उसे अपने जीवन का, समाज का एक हिस्सा, एक रीति मानते हैं। कुछ ऐसी ही सामाजिक कुरीतियों के बारे में हम आप सबके साथ एक नाटक साझा कर रहे हैं। हिंसा के प्रभाव। हिंसा एक ऐसी कुरीति है जिसका प्रभाव न केवल जिस पे हिंसा हो रही है उस पे पड़ता है, बल्कि ये ऐसी छुआछूत की बीमारी है जो बहुतों को, या यूं कहें तो सभी को अपनी चपेट में ले लेता है। हिंसा का प्रभाव इतना गहरा पड़ता है कि ये अपने साथ साथ कई जिंदगियों को प्रभावित करता है। इसी विषय पर हम हिंसा को नो की अगली कहानी प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम है हिंसा के प्रभाव। ये कहानी है प्रज्ञा की। प्रज्ञा एक शादीशुदा महिला है। प्रज्ञा के घर में उसका पति विनोद, 18 साल का बेटा राहुल और 12 साल की बेटी पिंकी और प्रज्ञा की सास लता भी है। प्रज्ञा एक गृहिणी होने के साथ साथ पास के स्कूल में टीचर भी है। प्रज्ञा अपने सारे दायित्वों का निर्वहन बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। वो अपने बच्चों की, अपने पति की और अपनी सास की देखभाल करने के साथ साथ जिस स्कूल में पढ़ाती है उस स्कूल के भी सारे कार्यों को बखूबी निभाती है। प्रज्ञा का पति विनोद भी पास की ही एक कंपनी में काम करता है। प्रज्ञा के पति विनोद को ये हमेशा लगता है कि औरतों को मर्दों की छाया में ही रहना चाहिए। विनोद को ये लगता है कि पुरुष ही प्रधान होना चाहिए। वो अक्सर ही प्रज्ञा को प्रताड़ित करता है। एक रात विनोद अपने ऑफिस से घर आया और हाथ मुंह धो के प्रज्ञा से कहता है,
1: प्रज्ञा, ए प्रज्ञा, अरे जरा चाय बना दो, मैंने हाथ पैर धो लिया है।
2: रात बहुत ज्यादा हो गई है, अभी अगर आप चाय पियेंगे तो फिर खाना नहीं खाएंगे आप।
1: अरे मुझे पहले चाय पीना है, ले आओ।
2: खाना तो कब का बन गया है, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं खाने का।
1: जो कह रहा हूँ करो, मुझे कहानियाँ ना सुनाओ।
2: ठीक है, बना देती हूँ।
0: प्रज्ञा चाय बनाने चली जाती है। इधर विनोद टीवी देखने लगता है। कुछ देर बाद,
1: प्रज्ञा चाय बनी कि नहीं?
2: क्या कह रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से।
1: अरे पूछ रहा हूँ तब से कि चाय बनी।
2: अरे टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए तब सुनाई देगा।
1: तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या, तब से चिल्ला रहा हूँ।
2: वो टीवी की आवाज की वजह से सुनाई नहीं दे रहा था।
1: सुनाई नहीं दे रहा था कि सुन के भी इग्नोर कर रही थी?
2: ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, सुन के मैं क्यों इग्नोर करूंगी?
1: ताकि चाय ना बनानी पड़े।
2: अरे बना तो रही हूँ।
1: हाँ तो कोई एहसान नहीं कर रही हो चाय बना के।
2: अच्छा चाय बन गई है, लेते जाइए।
1: मैं चाय लेके जाऊँ? नहीं, मैं चाय लेके जाऊँ? आज चाय लेके जाने को कह रही हो, कल बोलोगी खाना बना दीजिए, परसों बोलोगी बर्तन धो दीजिए। भूल गई हो क्या अपनी औकात?
2: माफ करिएगा, मैं खुद ही चाय टीवी वाले रूम में लेके आती हूँ।
1: मुझसे अब से ऐसे फालतू की बातें मत करना, कह दे रहा हूँ।
2: जी ठीक है।
0: विनोद रूम में जाके बैठता है और टीवी ऑन कर लेता है। प्रज्ञा भी विनोद को चाय देके उस रूम में जाती है जहाँ बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं।
2: राहुल, तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया?
3: हाँ, मेरा काम तो हो गया है।
2: अच्छा, ये पिंकी कहाँ गई है?
3: मैंने उस

0: भगा दिया है।
1: क्यों?
0: अरे वो जुमान लड़ा रही थी मेरे से, लड़कियों की तरह नहीं रह रही थी। मम्मी तुम उसे समझा दो कि हद में रहा करे वो अपनी।
1: पागल हो क्या तुम? अपनी छोटी बहन को कोई इस तरह परेशान करता है?
0: अरे मैं लड़का हूँ और वो लड़की है, ऊपर से मेरे से छोटी भी है, उसे बात समझनी चाहिए ना।
1: चुप रहो, चलो जाके उसको लेके आओ। देखो किस कमरे में है वो।
0: मैं नहीं लाऊंगा, जहाँ मन वहाँ जाए। और मम्मी पापा अगर आपको डांटते हैं या मारते हैं तो वो कभी आपको मनाते हैं, तो मैं क्यों उसे मनाऊं? लड़के थोड़े कभी झुकते हैं।
1: बिल्कुल चुप रहो तो तुम। ये सब कहाँ से तुम सीख रहे हो, ये लड़का लड़की में अंतर? अभी एक थप्पड़ पाओगे सारा दिमाग सही हो जाएगा। जाओ उसको बुला के लाओ, उसको भी पढ़ने दो चुपचाप।
2: प्रज्ञा फिर अपने पति के पास जाती है जो कि टीवी देख रहा होता है।
1: सुनिए, चलिए खाना खा लीजिए।
3: अभी नहीं खाऊंगा, अभी तो चाय पी है।
1: इसीलिए कह रही थी चाय ना पीजिए, आपको भूख नहीं लगेगी फिर।
3: हाँ अब जो तुम कहोगी वही करूँगा ना।
1: नहीं मैं तो
3: क्या, मैं तो
1: वो बच्चे फिर से भूखे सो जाएंगे, बहुत ज्यादा रात हो रही है ना, और उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। शाम से ही कह रहे हैं कि मम्मी खाना दो खाना दो। मैं आपका इंतजार कर रही थी।
3: तो सो जाए या जाओ बच्चों को खिला दो, मैं बाद में खाऊंगा।
1: अब समय तो हो ही गया है खाना खाने का, सब लोग एक साथ ही खा लेते हैं ना।
3: अरे यार एक बार बोल दिया भी नहीं खाऊंगा तो सुनाई नहीं दे रहा तुमको, चली जाओ यहाँ से।
1: जी ठीक है, बच्चों को खिला के सुला देती हूँ।
2: प्रज्ञा वहाँ से चली जाती है और बच्चों को खाना खिला के सुला देती है। फिर वो अपनी सास के पास जाती है।
1: माँ जी चलिए आप खाना खा लीजिए।
4: विनोद खाना खा लिया?
1: नहीं अभी वो नहीं खाएंगे, वो अभी टीवी देख रहे हैं और थोड़ी देर पहले उन्होंने चाय भी पी है।
4: अरे इतनी रात हो रही है, अब कब खाएगा?
1: मैंने बोला है तो कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद खाऊंगा।
4: मैं ही पहले खा लूँ क्या? पहले उसे खिलाओ।
1: आप एक बार चल के कह दीजिए ना।
4: ठीक है मैं कहती हूँ। विनोद चलो खाना खा लो।
3: अच्छा अभी आपको लेके आई है सिफारिश के लिए।
2: और विनोद प्रज्ञा को फिर से एक थप्पड़ मारता है।
3: तुमको बोले हैं मेरा जब मन होगा तब मैं खा लूंगा, पर तुमको अपनी चलानी है ना, मालकिन बनना है तुझे, लोगों को कहना है कि मेरा पति मेरे कब्जे में है।
1: नहीं आप गलत समझ रहे हैं।
3: अब तुम जो समझाओगी वो मैं समझूंगा।
1: नहीं मैं तो बस कह रही थी कि
3: चुप रहो। पता नहीं क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें सिखा के भेजे हैं, जैसे वो बदतमीज तुम भी वैसे ही बदतमीज। तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं इसीलिए तुम ऐसी हो, जुबान लड़ाती रहती है बदतमीज औरत।
1: आप मुझे जो कहना है कह लीजिए, पर घर वालों को इसमें ना घसीटिए।
3: क्यों ना घसीटूं? उनके यहाँ से तो सीख के आई हो ना ये सब, नींव तो वहीं की है। एक बात बताऊं, तुम्हारी माँ की भी ऐसी लक्षण रहे होंगे जो तुम्हारे बाप से जुबान लड़ाती है।
1: नहीं
3: तो तुम खुद को बहुत स्पेशल समझती हो, या तुम औरत नहीं हो जो इतने नखरे करती हो?
4: अरे छोड़ो ये बहस, चलो अब खाना खा लो।
3: हाँ चलो खा ही लेता हूँ।
2: विनोद प्रज्ञा और उसकी माँ लता तीनों खाने के टेबल पे बैठते हैं। प्रज्ञा सबको भोजन परोसती है, विनोद एक और खाता है और प्लेट उठा के प्रज्ञा के ऊपर फेंक देता है, जिससे प्रज्ञा के सिर पे चोट लग जाती है।
3: अरे ये क्या खाना बनाया है यार, इसी खाने के लिए तुम तब से पीछे पड़ी थी। खा लो सब्जी में नमक कितना तेज है, ऐसे ही खाना बनता है।
4: अरे ये क्या कर रहे हो विनोद, प्रज्ञा के सिर पे चोट लग गई है।
3: तो क्या करूं, पूजा करूं इसकी? जिस लायक है वही लायक काम कर रहा हूं उसके साथ, इसी की पात्र है ये।
4: तुम अपने गुस्से पे थोड़ा काबू क्यों नहीं करते, देखो इतना चोट लग गया है उसे।
3: माँ कहे दे रहा हूं तुम इसके चक्कर में ना पड़ो, तुम भोजन करो और सोने जाओ।
2: प्रज्ञा चुपचाप उठती है और दवा लगा के खाने की टेबल साफ करके सोने चली जाती है। बाकी सब भी सोने चले जाते हैं, सब सो रहे हैं, लेकिन प्रज्ञा को नींद नहीं आती। वो अपने जीवन के बारे में सोचती है और रोती है। उसे ये भी चिंता सताती है कि उसका बेटा राहुल भी अपने पिता के ही पद चिन्हों पर चल रहा है। ये सब जो भी हो रहा है उसका असर उसके बच्चे पर गहरा पड़ रहा है। उधर प्रज्ञा को ये डर भी सताता है कि कल मैं स्कूल जाऊंगी पढ़ाने तो साथ के बाकी टीचर्स उसका फिर से मजाक उड़ाएंगे। सिर पे लगी चोट को देखकर इन्हीं सब चिंताओं में पड़ी पड़ी प्रज्ञा कब सो जाती है उसे पता भी नहीं चलता। सुबह उठकर प्रज्ञा फिर रोज की तरह अपने कामों में लग जाती है। इस कहानी में प्रज्ञा पर हो रही हिंसा का असर उसके बच्चों पर पड़ता है और समाज में भी रोज की हो रही इस पारिवारिक हिंसा का असर प्रज्ञा के सामाजिक व्यवहार पर भी पड़ता है। उसके साथ में काम कर रहे बाकी के टीचर्स उसका मजाक उड़ाते और सामाजिक अवहेलना भी करते। प्रज्ञा की तरह तमाम औरतें इस प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। तो हमें अपने आसपास हो रही इस प्रकार की हिंसा को रोकना होगा। इसीलिए आप भी हमारे साथ मिलकर कहें, हिंसा को नो।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला लाउड स्पीकर 90 FM का। ये विशेष कार्यक्रम हिंसा को नो के अंतर्गत आप सुन रहे हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम आप समय दर समय यहाँ से सुनते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 01204060205 पर, और इसी नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। एक बार पुनः लाउड स्पीकर 90 FM का हम धन्यवाद करते हुए आपसे मैं अब अनुमति लेना चाहता हूं। बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान, जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है, उनके हक की बात करता है, और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष श्रृंखला के तौर पर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसमें हमें सहयोग मिला है स्मार्ट संस्था का, और जिन विषयों पर समय दर समय हम बात कर रहे हैं वो विषय हैं जैसे कि मेरी पत्नी, मेरा अधिकार, दहेज प्रथा या हत्या, कैसे बचे मनचलों से, कच्ची उम्र की शिक्षा, माँ मुझे बाहर जाना है, पितृसत्ता, असमान व्यवहार, असमान दीक्षा, खतना धर्म नहीं दर्द, बालिका या वधू, और बेटियां हैं तो वंश है यानी प्रजनन अधिकार। तो इस तरीके से हर एक मुद्दे पर हम खुलकर बातें कर रहे हैं, और हम आपको बताना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में हमें दूसरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है, और यह भी सच है कि दूसरे स्टेशन हमारे खास प्रोग्राम को

0: नमस्कार। आज के हमारे कार्यक्रम हिंसा को नो में आप सबका स्वागत है और ये कार्यक्रम हम स्मार्ट की सहायता से प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंसा एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही एक डर सा लगता है। जरूरी नहीं कि हिंसा मारपीट या शारीरिक प्रताड़ना ही हो। कई बारी हमारे साथ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम हिंसा के रूप में नहीं मानते, उसे अपने जीवन का, समाज का एक हिस्सा, एक रीति मानते हैं। कुछ ऐसी ही सामाजिक कुरीतियों के बारे में हम आप सबके साथ एक नाटक साझा कर रहे हैं। ये कहानी है मंजू की। मंजू के घर में उसका पति सुरेश, लड़का गोलू और सास प्रभा है। मंजू एक गृहिणी है। वो अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत ही बढ़िया ढंग से करती है। मंजू का पति सुरेश पास की कंपनी में नौकरी करता है। मंजू का लड़का मोहल्ले के ही स्कूल में पढ़ता है। एक रात खाने के टेबल पे,
1: अरे आज खाने में क्या बना है?
2: रोटी सब्जी बनी है।
1: यार तुमको जब पता है कि माँ रोटी नहीं खा पाएंगी तो क्यों रोटी बनाई हो?
2: रोटियाँ एकदम पतली पतली बनाई हैं और गरम गरम रोटियाँ नरम होती है, माँ जी आराम से खा लेंगी। अगर नहीं खा पाएंगी तो मैं चावल बना दूंगी।
1: बना दूंगी, बनाई क्यों नहीं?
2: चावल बहुत कम था, सुबह के लिए भी नहीं था, तो थोड़ा सा ही चावल था, इसीलिए मैंने सोचा कि रोटियां ही बना दूं पतली पतली, माता जी दूध के साथ खा लेंगी।
1: तुम माँ के लिए रोटियां बनाई ही क्यों?
2: क्या करती, कुछ और था ही नहीं।
1: तो तुम दिन में रोटियां खा लेती, माँ के लिए चावल बना देती।
2: गलती हो गई। अभी के लिए ना मैं एक काम करती हूँ, वो रोटियां भिगो देती हूँ दूध में, मम्मी आराम से खा लेंगी।
1: माँ तो खाएंगी पर तुम इस समय खाना नहीं खाओगी, ये तुम्हारी सजा है।
2: जी ठीक है।
1: देखो बेशरम को अभी भी शर्म नहीं आ रही, कैसे कह रही जी ठीक है। दिन भर जो मन करता है करती है, कोई काम नहीं है, बस एक खाना बनाना है वो भी ढंग से नहीं कर पाती है।
2: अब से नहीं करूंगी।
1: अभी पिछले हफ्ते ही बोला था कि नहीं करूंगी। तुम औरत नहीं हो, कुत्ते की दुम हो, कितना भी कहो समझ नहीं आता है। पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है तुम्हारा।
2: चावल नहीं था तो क्या करती?
1: अच्छा तुम मुझे मेरी कमियां बताओगी? एक बात बताओ, इतनी हिम्मत लाती कहाँ से हो?
2: आपकी कमियां नहीं बता रही हूँ मैं तो बस ये कह रही हूँ कि चावल नहीं था तो रोटियां बनानी पड़ी।
1: अभी भी औरत चुप नहीं हो रही है।
2: जी माफ करिएगा। अच्छा मैं जो चावल है वही बना देती हूँ माँ जी के लिए।
1: ठीक है।
0: मंजू सुरेश के लिए भोजन परोसती है। सुरेश एक निवाला खाता है और थाली पटक के एकदम गुस्से से उठ जाता है।
1: सब्जी में इतना नमक डाल के मुझे मारना चाहती है क्या?
2: जी जी गलती से पड़ गया होगा।
1: सारी गलतियां कर लेती है और भोला सा चेहरा बना के कहती है गलती से हो गया। मुझे उन मर्दों में न समझना जो औरत के त्रिया चरित्र को नहीं समझते। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, समझी?
0: सुरेश मंजू के गालों पे एक थप्पड़ मारता है।
2: आपको तो बस मुझे ही मारना पीटना आता है हर बात पे।
1: बेशर्म औरत, एक तो गलती भी कर रही है और जुबान भी लड़ा रही है।
2: देखिए आप मुझे मारा पीटा ना करिए, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आप हर बात पे मेरे पे हाथ उठा देते हैं।
1: फिर बोली चुप नहीं रहोगी?
0: बात को बढ़ता देख सुरेश की माँ प्रभा आती है और मंजू से कहती है,
3: अरे वो नहीं समझ रहा तो तुम समझदार बनो, रात का समय है, आवाज कहाँ तक जा रही होगी।

0: मोहल्ले वाले सुनेंगे तो कितनी बदनामी होगी।
1: माँ जी आप देख रही हैं कैसे ये मुझे मार रहे हैं।
0: हाँ मैं सब देख रही हूँ, तुम भी कोई कम नहीं हो, इतना तेज से लड़ रही हो, बात कहाँ तक जा रही होगी। लाज हया तो है नहीं कि लोग सुनेंगे तो बदनामी होगी। अरे मर्द दो थप्पड़ मार ही दिया तो क्या हो गया।
1: माँ जी ये कलर रोज ही होता है, कब तक सहूं मैं ये।
0: चुप रहो, एक शब्द अब मत बोलना।
2: मंजू चुपचाप खाना खाकर बिस्तर पे सोने चली जाती है। रात में भी मंजू ठीक से सो नहीं पाती, वो सोचती रहती है और फिर अपने मन को दिलासा देती है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही थोड़े ही हो रहा है, इतना तो हर औरत को सहना पड़ता है। इस तरह मंजू जैसी महिलाएं खुद पे हो रही हिंसा को समाज के डर की वजह से स्वीकार करती चली जाती हैं।

0: हिंसा के डर की इस कड़ी में हमारी अगली कहानी है रिया की। रिया 21 वर्षीय नवयुवती है। वो स्कूल की पढ़ाई खत्म कर अब उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश कर चुकी है। रिया की सहेलियों के साथ साथ उसके कुछ दोस्त लड़के भी हैं जो उसी विश्वविद्यालय में प्रवेश कर चुके हैं। रिया का एक करीबी दोस्त है रोहित। रिया रोहित से बहुत प्रेम करती है। रोहित भी रिया से प्रेम करने का दिखावा करता है। रोहित का रिया के साथ साथ और भी कई लड़कियों से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। एक दिन कॉलेज में,
1: रोहित रोहित।
2: हाँ बोलो।
1: मैंने सुना है तुम आजकल सुरभि से बहुत बात कर रहे हो।
2: हाँ कर रहा हूँ बात, तो क्या दिक्कत है?
1: रोहित मैं तुमसे प्यार करती हूँ यार, तुम इस तरह से किसी और लड़की से बात करोगे तो मुझे दिक्कत नहीं होगी।
2: अरे प्यार मोहब्बत का क्या है, वो तो सबसे हो जाता है। मैं भी ये थोड़े कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता।
1: अगर तुम मेरे से प्यार करते तो इस तरह से सुरभि के पीछे नहीं पड़े रहते।
2: अरे यार पीछे आगे क्या पड़ना, मैं तुमको भी तो मानता हूँ ना यार।
1: रोहित ये मुझे नहीं पसंद कि तुम मेरे साथ साथ बाकी लड़कियों को भी डेट करो।
2: देखो बेबी पसंद तो करना पड़ेगा क्योंकि मैं ना ही तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही बाकी लड़कियों को।
1: तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी।
2: ऐसे कैसे नहीं रहोगी, तुम क्या तुम्हारे बाप भी रहेंगे, समझी?
1: बहुत बदतमीज हो यार तुम, तो बात करने की तमीज बिल्कुल ही भूल गए हो। अब तो मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती।
2: ठीक है मत रहना, पर ये देखती तो जाओ।
1: क्या है?
2: अरे खुद देख लो क्या है।
0: रोहित रिया को अपने फोन में रिया की आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस दिखाता है और ये फोटोज और वीडियोस वायरल करने की धमकी देता है। रिया टूट सी जाती है और रोहित के साथ बिना कुछ बोले रहने के लिए तैयार हो जाती है। रिया जैसी आजकल की यूथ इस तरह की हिंसा का शिकार हर रोज हो रही है और समाज के, घर वालों के और चार लोगों के डर की वजह से वो इस हिंसा को स्वीकार भी कर ले रही है। परंतु हमारा ये कहना है कि आप इस तरह की किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं ताकि आपके साथ साथ बाकी की महिलाएं भी ऐसी हिंसा का शिकार ना होने पाएं। आशा करते हैं कि आप सबको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी और उसने आपको कुछ शिक्षा भी दी होगी और आपने समझा भी होगा कि किसी भी समस्या का समाधान मारपीट सहने से नहीं बल्कि परिस्थिति का हिम्मत से सामना करने में है। तो उम्मीद है आप भी इस कहानी के द्वारा दिए गए संदेश को अपने अंदर चरितार्थ करेंगे और आप भी कहेंगे हिंसा को नो।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला लाउड स्पीकर 90 FM का। ये विशेष कार्यक्रम हिंसा को नो के अंतर्गत आप सुन रहे हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम आप समय दर समय यहाँ से सुनते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 01204060205 पर, और इसी नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। एक बार पुनः लाउड स्पीकर 90 FM का हम धन्यवाद करते हुए आपसे मैं अब अनुमति लेना चाहता हूं। बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूँ कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जाँच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जाँच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
2: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्ला

0: कर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे सुनीता, कैसी है मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
1: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
2: जी दीदी, जैसा आपने बोला था हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं तुरंत साफ करते हैं, जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे
3: और आसपास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी भी चीज में पानी जमा होने नहीं देते। दीदी
1: बहुत

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है श्रोताओं आज के प्रसारण में। आइए आरंभ करते हैं सुविचार से। इसे हमें भेजा है जनाब SD अंसारी जी ने। आप लिखते हैं,
2: मूर्ख व्यक्ति ज्ञानी से भी कुछ नहीं सीख पाता जबकि ज्ञानी व्यक्ति मूर्ख से बहुत कुछ सीख लेता है।
3: आपने बहुत सही कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुविचार को भेजने के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय।
3: पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर।
2: सत्रोड खुर्द हिसार हरियाणा से पवन और प्रिंस।
3: और बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूजा पटेल।
2: आप सबका हार्दिक आभार संदेश भेजने के लिए।
3: तो श्रोताओ अब बारी है पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर की। तो हमारा प्रश्न था सिम्फनी किसे कहते हैं और बीथोवन की सिम्फनी का कार्यक्रम किस शहर में हो रहा था।
2: सिम्फनी का कार्यक्रम वियना शहर में हो रहा था
3: जो ऑस्ट्रिया में है। हमारा दूसरा सवाल था श्रोताओ अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अंतिम वसीयत पर हस्ताक्षर कब और कहाँ किए थे।
2: इसका सही उत्तर है साथियों अपनी मृत्यु से एक वर्ष पहले उन्होंने 27 नवंबर 1895 को पेरिस के स्वीडिश नॉर्वेजियन क्लब में अपनी अंतिम वसीयत पर हस्ताक्षर किए। और हमारा अगला प्रश्न था,
3: नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था।
2: नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम का नाम फैटमैन था। और हमारा अंतिम प्रश्न था
3: कि पहले किन दो भाषाओं में मशीनी अनुवाद का काम शुरू हुआ।
2: इसका सही उत्तर है अंग्रेजी और रूसी भाषाओं में सबसे पहले मशीनी अनुवाद का काम शुरू हुआ।
3: तो श्रोताओ अब आज का प्रश्न, और आज का प्रश्न है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम बताइए।
3: 8800440559 हमारा IVRS फोन नंबर है। आप इस नंबर पर या
2: audio@cit.nic.in पर हमें अपना उत्तर भेज सकते हैं।
3: श्रोताओ अब बारी है आज के पहले कार्यक्रम की। तो चलिए शुरू करते हैं एक रोचक और मनोरंजक खेल से और सुनते हैं कार्यक्रम
2: आओ खेलें खेल।
4: अच्छा दोस्तों, हाँ कोई खेल खेलेंगे, ये ठीक रहेगा। तो हो जाए एक खेल।

0: बच्चों।
1: हेलो अंकल जी।
0: ओ वाह, आपको मेरा नाम पता है। अच्छा, मेरे नाम का मतलब बताओ। अंकल
1: गेम।
0: वेरी गुड, अंकल गेम। अंकल गेम, आज आपको खिलाएंगे एक बहुत बढ़िया गेम। तो अब हम ट्रेन को चलाने जा रहे हैं, तो खेलोगे मेरे साथ ये गेम?
1: हाँ अंकल जी।
0: वेरी गुड, तो गेम खेलेंगे सबके साथ।
2: स्कूल में भी है।
0: अच्छा, स्कूल में भी एक गाड़ी है। आप अपना नाम बताओ।
2: गार्गी।
0: गार्गी, तो गार्गी हमारी रेलगाड़ी की बनेगी इंजन। जोरदार तालियां गार्गी के लिए। वेरी गुड, गार्गी सबसे आगे, और गार्गी के बाद में इंजन का पहला डिब्बा कौन बनेगा? आप, शिव कुमार, डिब्बा नंबर वन। और शिव कुमार के बाद में कोच नंबर टू कौन बनेगा? आप,
2: कृष्णलिक।
0: तो गार्गी, शिव कुमार और कृष्णलिक के लिए जोरदार तालियां। और अब हमारा कोच नंबर थ्री कौन बनेगा? आप,
3: तनिष्क।
0: तनिष्क के लिए भी ताली हो जाए भाई। ये बात। और तनिष्क के बाद में अगला कोच बनेंगे आप,
3: मोनालिसा।
0: और मोनालिसा के बाद में अगला कोच कौन बनेगा? आप,
4: सनी।
0: तो मोनालिसा और सनी के लिए भी तालियां। वेरी गुड। और इसके बाद ये गोल मटोल प्यारी सी गुड़िया जो है,
2: गुनगुन,
0: वाह वाह, आप बनेंगी अगला कोच। और अब आखिरी कोच जिसमें के गार्ड बैठता है, उसमें आप बैठेंगे,
3: वंशज।
0: वंशज, वंशज के लिए जोरदार तालियां। तो अब गेम शुरू की जाए। वेरी गुड। तो अब इस ट्रेन को चलाने से पहले जरूरी है कि सारे डिब्बों को एक दूसरे के साथ में जोड़ दिया जाए। उसके लिए करेंगे क्या, हम एक दूसरे को पीछे से पकड़ लेंगे, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे को पीछे से
1: पकड़ेंगे।
0: और ये आप हाँ आप, अरे भाई धक्का मत दो, धक्का क्यों दे रहे हो? हाँ, पकड़ लिया भाई सबने एक दूसरे को। तो अब हम ट्रेन को चलाने जा रहे हैं। ओ वेरी गुड, तालियां। छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक करती रेलगाड़ी, जादू की ये रेलगाड़ी। छुक छुक करती रेलगाड़ी, जादू की ये रेलगाड़ी। नदी में ये जाएगी, मछली को बैठाएगी। नदी में ये जाएगी, मछली को बैठाएगी। छुक छुक करती रेलगाड़ी, छुक छुक करती रेलगाड़ी। पेड़ पे ये जाएगी, किसको ये बैठाएगी? बोलो बोलो बोलो,
1: चिड़िया को।
0: हाँ, चिड़िया को। तो पेड़ पे ये जाएगी,
1: चिड़िया को बैठाएगी।
5: जंगल में ये जाएगी,
0: जंगल में
2: बैठाएगी।
0: वेरी गुड, गार्गी ने कितना अच्छा जवाब दिया। तो जंगल में ये जाएगी,
1: शेर को बैठाएगी।
0: छुक छुक करती रेलगाड़ी, छुक छुक करती रेलगाड़ी, छुक छुक करती रेलगाड़ी।
5: फिर गुनगुन, अगर रेलगाड़ी तुम्हारे घर चली गई तो किसको बैठाएगी? बोलो,
2: गुड़िया को।
0: गुड़िया को। तो घर में ये जब जाएगी तो गुड़िया को बैठाएगी। छुक छुक करती रेलगाड़ी, जादू की ये रेलगाड़ी। नदी में ये जाएगी, मछली को बैठाएगी। नदी में ये जाएगी, मछली को बैठाएगी। छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक। पेड़ पर ये जाएगी,
2: किसको बिठाएगी?
0: ओ वेरी गुड, पेड़ पे ये जाएगी,
1: चिड़िया को बैठाएगी।
0: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक।
5: जंगल में ये जाएगी,
0: किसको ये बैठाएगी?
1: शेर
0: को बैठाएगी। जंगल में ये जाएगी,
1: शेर को बैठाएगी।
0: छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी, जादू की ये रेलगाड़ी।
5: घर में जब ये जाएगी, किसको ये बैठाएगी?
0: गुड़िया को बैठाएगी। छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी, जादू की ये रेलगाड़ी। जोर से बोलो, छुक छुक करती जादू की ये रेलगाड़ी।
5: अब गाड़ी तेज चलेगी, छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक
1: छुक
5: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक उमंग सुनने वाले सभी साथियों, आप भी इस खेल को खेलकर अपने दोस्तों के साथ मजा कर सकते हैं। तो आप भी चलाइए अपनी रेलगाड़ी, छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी जादू की ये रेलगाड़ी, छुक छुक करती रेलगाड़ी जादू की ये रेलगाड़ी।
4: आशा है ये कार्यक्रम आपको अवश्य पसंद आया होगा और आपको मजा ही नहीं बहुत मजा आया होगा।
6: जी हाँ, जरूर।

0: मनोदर्पण स्कूली छात्रों और अभिभावकों के लिए NCERT द्वारा मनोपरामर्श की एक विश्वसनीय हेल्पलाइन। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए अब सुनते हैं एक सुंदर गीत। ये हमें गाते गुनगुनाते बताएगा कि हमारे भोजन में कई ऐसे तत्व भी होते हैं जिनमें पोषक तत्व तो बिल्कुल नहीं होते हैं,
2: लेकिन वे हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उन्हें हम कहते हैं रफेज या आहारीय रेशा। रफेज पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का खाने योग्य लेकिन अपचनीय हिस्सा है,
1: जैसे कि साबुत अनाज, मेवे, बीज, फलियां, फल और सब्जियां।
2: जी,
1: रफेज पाचन नली में मौजूद बैक्टीरिया के लिए भी महत्वपूर्ण है।
2: तो आइए सुनते हैं गीत डाइटरी फाइबर।

0: डाइटरी फाइबर अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आशा है साथियों ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। आज का दूसरा कार्यक्रम है
1: मोची और बोनी।

0: एक मोची और उसकी पत्नी अपनी दुकान के पीछे रहते थे। मोची बहुत अच्छे जूते बनाता था। उसके पास पैसे बहुत कम थे। इसलिए वो एक जोड़ा जूते के लिए ही चमड़ा लाता था। एक दिन काम करते करते अंधेरा हो गया। मोची ने जूते बनाने के लिए चमड़ा काट कर रख दिया। फिर वो घर चला गया। अगले दिन मोची दुकान में आया। मोची ने अपनी पत्नी से कहा,
1: अरे ये जूते शाम को तो मैंने चमड़ा काट कर ही रखा था।
2: अच्छा,
1: देखो रात में ऐसे सुंदर और मजबूत जूते किसने बना दिए?
2: कितने सुंदर जूते हैं।
0: उसकी पत्नी बोली। तभी दुकान पर एक आदमी आया, उन जूतों को देखकर बोला,
3: ये जूते बड़े सुंदर हैं, मुझे दे दो भाई।
0: मोची ने जूते उसे दे दिए। उसने मोची को बहुत से पैसे दिए।

0: उस दिन मोची दो जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा लाया। शाम को फिर चमड़ा काटकर वो चला गया। अगले दिन वो दुकान में आया और बोला,
1: अरे आज भी जूते बन गए हैं।
2: हाँ।
1: इनको कौन बना जाता है?
0: उस दिन भी उसकी दुकान पर एक आदमी आया और बोला,
3: ये जूते बड़े मजबूत हैं, मुझे दे दो।
0: मोची ने दोनों जोड़े जूते उसे दे दिए। उस आदमी ने भी मोची को बहुत से पैसे दिए।

अब मोची अधिक चमड़ा लाने लगा। वो शाम को चमड़ा काटकर रख देता। दूसरे दिन उसे जूते बने मिलते, जूते तुरंत बिक जाते। इस तरह उसके पास बहुत से पैसे हो गए।

0: एक दिन मोची ने अपनी पत्नी से कहा,
1: हम आज रात को खिड़की में से देखेंगे ये जूते कौन बना जाता है।
0: चमड़ा काटकर मोची अपनी पत्नी के साथ खिड़की के पीछे छिपकर बैठ गया और देखने लगा।

0: अरे देखो देखो,
1: उसकी पत्नी धीरे से बोली। मोची ने देखा दो बौने नाचते नाचते आए और जूते बनाने लगे। मोची की पत्नी बोली,
0: अच्छा तो ये बौने ही जूते बना जाते हैं। इन दोनों ने हमारी बहुत मदद की है। मैं इनके लिए सुंदर सुंदर कपड़े बनाऊंगी।
2: मैं इनके लिए छोटे छोटे जूते बनाऊंगा।
1: मोची बोला,

0: मोची और उसकी पत्नी ने बौनों के लिए जूते और कपड़े बनाए। शाम को उन्हें दुकान में रख दिया। फिर वे खिड़की के पीछे बैठकर देखने लगे। रात हुई, बौने आए।
1: आज तो चमड़ा नहीं है,
0: एक ने कहा।
2: अरे देखो ये क्या, कपड़े और जूते,
0: दूसरे बौने ने कहा। कपड़े और जूते पहनकर वे बहुत खुश हुए और उछलते कूदते चले गए। मोची और उसकी पत्नी दोनों बहुत प्रसन्न थे।

0: और अब सुनते हैं आज के उमंग प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम।
1: सुनते हैं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक सुंदर कविता की संगीत में प्रस्तुति। शीर्षक है
0: अभी न होगा मेरा अंत।

0: मित्रों, इस कविता के गायन को सुनकर आपके मन में भी कुछ लिखने, गाने, गुनगुनाने की भावना अवश्य जगी होगी। तो क्यों ना आप भी एक छोटी सी प्यारी सी कोई कविता लिखें और उसे गाएं और गुनगुनाएं।
1: आशा है श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।
0: तो समय को देखते हुए अब हम आपसे आज के लिए आज्ञा चाहते हैं। कल एक बार फिर से आप सबसे मुलाकात होगी। तो अब अजीत
1: और विमलेश को तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना और अमरजीत के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में। यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से

0: मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्ची की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
2: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन, आपके साथ वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं एक खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है कम्युनिटी कनेक्ट। और इसके अंतर्गत हमने एक प्रोग्राम को नाम दिया है राब्ता, यानी कि हम एक खास मेहमान से राब्ता करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वो अपने एक सब्जेक्ट के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं या जुड़ती हैं। जहां आप काम कर रहे होते हैं किसी भी संस्थान में, तो जाहिर सी बात है कि आप चाहते हैं बड़ा खुशनुमा माहौल रहे। अगर कहीं कोई दिक्कत या परेशानी आ जाती है तो सच बात तो यह है कि एक कमेटी होती है और कमेटी से जुड़े हुए लोग भी होते हैं। वो कमेटी क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, इसी सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एक खास गेस्ट आप जुड़ रही हैं। आप हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की प्रिसाइडिंग ऑफिसर डॉक्टर एकता चौधरी। मैम सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मिस्टर गगन, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, जो हमने जिक्र किया ICC, ये है क्या?
1: इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो बनाई गई थी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट के तहत, जो कि 2013 में लागू हुआ था, जिसको हम सब पॉश या GS कैश के नाम से भी जानते हैं। फिर 2017 में द नेम वाज फॉर्मुलेटेड एंड गिवन एज ICC, दैट इज इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इसका जो मेन एजेंडा है वो है प्रोवाइड सेफ एंड कॉन्फिडेंशियल एंड फेयर सिस्टम जो सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड इश्यूज एट वर्कप्लेस को हैंडल करे।
0: जी सोलिसिटर्स, मैं समझता हूँ कि इस बात को आप जान गए हैं, समझ गए हैं। हर कोई यही चाहता है कि अगर आप जिस जगह काम कर रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो, लेकिन जब कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आपको आपके राइट्स पता होना बहुत जरूरी है कि अगर परेशानी है तो इस परेशानी का हल कहाँ हो सकता है, किसके पास जाकर हो सकता है, क्या कोई इस तरीके की बॉडी बनी हुई है जहां हम अपनी बात रख पाए, कह पाए। तो मैम ने इसके बारे में अपनी बात रख दी। तो मैम जब आगे बढ़ता हूँ तो बात निकल कर ये सामने आती है कि ये जो कमेटी है किस तरीके से काम करती है।
1: जो ICC कमेटी है इसमें जैसे कि पहले बताया हम मैंने कि इट वर्क्स ऑन प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल ऑफ एनी कम्प्लेन। सो तो इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हु इज अ सीनियर वुमेन एम्प्लॉई, और एटलीस्ट दो मेंबर्स होते हैं जो फैकल्टी टीचिंग मेंबर्स होते हैं, दो नॉन टीचिंग मेंबर्स होते हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है एक एक्सटर्नल मेंबर होता है जो कि किसी NGO से या जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या फीमेल की लिए काम करता हो। और इसमें फिर तीन स्टूडेंट मेंबर्स भी होते हैं जिसमें कि एक ग्रेजुएट होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट होता है और एक रिसर्च स्कॉलर होता है।
0: जब आप स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं तो उनका जो बायोडाटा है तो वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, यानी कि लॉ के ही होना जरूरी है या स्कूल ऑफ मीडिया के होना जरूरी है या डेंटल का होना जरूरी है या किसी भी फील्ड से आ सकते हैं?
1: नहीं, स्टूडेंट जो है वो किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, पर उनका एक झुकाव और एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो इस क्षेत्र में कुछ काम करना या कुछ अपना योगदान देना चाहें। उस तरीके से हम स्टूडेंट का
0: इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। सो लिसनर्स, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है सिर्फ और सिर्फ सुरशादा 90.8 FM पर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। कम्युनिटी कनेक्ट के प्रोग्राम के तहत हम राब्ता कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारी गेस्ट जुड़ी हुई हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी, जो कि इस फील्ड की जानकार हैं, बहुत सीनियर हैं। और ये किस तरीके से काम करती है ये कमेटी, इसके बारे में हम मैम से जान रहे हैं। तो मैम, ब्रेक के इस पार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू गगन जी।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना कि ये कमेटी क्या है, किस तरीके से काम करती है। आपने हमें बताया कि इसमें कई लोग जुड़े होते हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे कि आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है, उस अनुभव के साथ आप आते हैं। स्टूडेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं, लेकिन एक जिज्ञासा होना बहुत ज़रूरी है कि वो उस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं या यूँ कहें कि अपने अधिकारों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो मैं जो स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि क्या वाकई उनका इंटरेस्ट होता है या नहीं होता।
1: स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है, पर यूजुअली जो केसेस हम सोच समझ के स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जैसे कि अगर स्टूडेंट का कोई कंप्लेन आती है तो हम स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं, पर यदि अगर कोई सीनियर फैकल्टी की या फैकल्टी हो तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ना रखा जाए। क्योंकि उसमें उस केस में ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, और कुछ लेवल ऐसे होते हैं जिसमें कि चीज़ें कई बार गलत साबित होती हैं। उस केस में हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, पर अदरवाइज वो किसी भी फील्ड का कोई भी स्टूडेंट जो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो और जो कमिटेड हो वुमेन्स राइट के लिए हेल्प करने के लिए, उन स्टूडेंट्स को हम इनरोल करते हैं।
0: यानी कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा। अब मैं आपसे ये जानना समझना चाहता हूँ कि जब हम स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कभी कभी झूठी बातें भी आपके सामने आती होंगी, तो उस समय आप कैसे उसको समझ पाती हैं कि ये गलत बात है, इसको हम यहाँ रोक सकते हैं, आपने झूठी बात रखी है। या कभी कभी कोई रिटर्न में आ जाती है, जैसे आप ऑफर हमें बता रही थी कि अगर बात आगे तक बढ़ जाती तो जाहिर सी बात है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट सभी का हो जाता है, एचआर होता है, आपका एक अलग भूमिका होती है, कभी कभी पुलिस या लॉ के अधिकारी भी जुड़ जाते हैं, तो वो क्या सीन होता है, किस तरीके से कंप्लेंट को आप लोग लेते हैं, हैंडल करते हैं।
1: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गगन जी, ये बहुत ही आम सी बात है। ऐसे किस को बहुत सारे केसेस में होता है कि बच्चे को एक बार पहली बार में समझ नहीं आता कि वो एक्चुअली किस तरीके से और कहाँ तक कंप्लेंट ले जाना चाहता है। तो एक इसमें आईसीसी में एक है गाइडलाइंस में कि देयर इज अ वे टू फॉर अ कंसिलिएशन ऑल्सो। तो उस केस में हम स्क्रीनिंग कमिटी बनाते हैं पहले और दोनों पार्टीज को सुनते हैं, द कंप्लेनेंट एज वेल एज द रेस्ट्रेंट। तो उसमें ये होता है कि अगर हमें लगता है कि दोनों पार्टी आपस में सुलह करने के लिए तैयार हो जाती हैं, कई बार उनको समझ आ जाता है हमारी बात से ही या समझाने से, और उनको आपस में भी लगता है कि हमें आगे फर्दर कंप्लेन को बढ़ाने की या उस चीज को ले जाने की जरूरत नहीं है इतने सीरियस नोट पे, तो वो कंसीलिएशन के थ्रू उस कंप्लेन को वहीं की वहीं हम खत्म भी कर सकते हैं। पर अगर मैटर बहुत सीरियस होता है और हमें खुद लगता है तो हम उसको फिर आगे स्टेज ले जाते हैं।
0: ये तो रही एक बात, दूसरे पहलू को अगर मैं जानूं तो क्या आपने लोगों को दोस्त बनते हुए देखा है, अरे यार मैं नादान था, गलती कर गया, किसी ने मुझे उकसा दिया इस बात के लिए तो ये कंप्लेंट मैं लेकर आ गया या दर्ज करा दी।
1: हाँ, ऐसा भी होता है, पर क्योंकि ये एक्चुअली केसेस जो होते हैं आईसीसी में सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड ही आते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो उस केस में ये है कि हम बहुत किसी भी चीज को ना नजरअंदाज या आप कहें कि हम उसको सीरियसली ना लें, वो नहीं हो पाता। पर कभी कभी कुछ केसेस में होता है कि बच्चे नादानी में थोड़ा सा चीज को सीरियस नोट पे ले जाके उसको बढ़ावा देने के लिए या किसी को डराना भी हो थोड़ा बहुत
0: जी जी।
1: तो आके कंप्लेन कर देते हैं, पर उस केस में हमारी कोशिश यही रहती है कि फिर दोनों पार्टीज को थोड़ा थोड़ा समझाया जाए और बताया जाए कि ऐसे चीजें ना ले जाके आप उसको ठीक नोट पे भी एंड कर सकते हैं।
0: बहुत खूबसूरत। सो लिसनर्स, कहने का मतलब ये कि इन बातों को जानना समझना बहुत जरूरी है। एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एकता चौधरी से, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं आईसीसी कमेटी शारदा विश्वविद्यालय से, और बहुत बड़े अनुभव के साथ मैम आती हैं और किस तरीके से ये कमेटी काम करती है, तो ये जानना समझना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बातों का जो सिलसिला है लगातार हम उसको कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जब हम जिक्र करते हैं तो समुदाय की बातें होती हैं, आपकी बातें, हमारी बातें, और हर एक सब्जेक्ट पर हम यहां से बातें कर रहे होते हैं। आज ज्ञान विज्ञान की बातों के अलावा, पढ़ने पढ़ाने की बातों के अलावा, जिस सब्जेक्ट को हमने चुना है कॉलेज के समय में, ये जानना समझना बहुत जरूरी है जहां आप काम कर रहे हैं कि एक महिला के अधिकार क्या हैं। जब आप जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप अपनी बात को आगे लेकर जा पाते हैं और उसके बाद एक खुशनुमा माहौल आप महसूस करते हैं कि हाँ, ये वर्किंग प्लेस बहुत अच्छा है। और इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। जी हाँ, शारदा यूनिवर्सिटी में स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं और अच्छा माहौल यहाँ है, और यही वजह है कि दूर दराज से स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन जाने अनजाने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है कि अपनी बात को हम आगे लेकर कहां जाएं। उस समय एक कमेटी काम करती है जिसका नाम है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। उसकी प्रेसाइडिंग ऑफिसर आप हैं, डॉक्टर एकता चौधरी मैम। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये रूपरेखा बनानी पड़ती, बहुत ज्यादा मैं बोल गया। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो क्या बात है, वो क्या आधार है जिसकी वजह से कंप्लेंट आपके सामने आती है। जैसे कि अमूमन मैं समझना चाहूंगा आपसे, या तो मैं ऊंचा सुर आपको लगा गया, या मैंने आपकी शान में और कुछ गुस्ताखी कर दी, या कुछ और। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वो कंप्लेंट कौन कौन सी हो सकती है, ताकि जो लिसनर्स हैं वो अलर्ट रहें, स्टूडेंट्स भी अलर्ट रहें, या एक एम्प्लॉय भी अलर्ट रहे।
1: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है गगन जी, इससे क्योंकि लोगों को कई बार बहुत चीजों को लेके गलत फहमी होती है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के तहत या ICC के अंदर एक्चुअली क्या चीजें आती हैं जिसपे हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है ना, सिर्फ फिजिकल हैरेसमेंट को ही नहीं माना जाता है कि आपने फिजिकली किसी के साथ कुछ गलत किया है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट में आएगा, नहीं। और बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप अनवेलकम कोई फिजिकल एडवांसमेंट भी दिखाते हैं, या कोई रिक्वेस्ट या कोई एक्स्ट्रा फेवर्स भी किसी से मांगते हैं, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। और पासिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स,
0: जी,
1: आप अगर किसी को सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स भी करते हैं, पीछे से कमेंट मार रहे हैं, या पीछे से उसको अनवेलकम जेस्चर दे रहे हैं, या इशारों में भी कुछ बोल रहे हैं, कोई आपका कैसा भी अनवेलकम कंडक्ट जो दूसरे किसी को अच्छा ना लगे, फीमेल्स उसको ना पॉजिटिवली लें, आपका चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो या फिजिकल हो, जिसको कि वो ठीक ना उनको लगे, उनको अनकम्फर्टेबल महसूस कराए, तो जिसकी वजह से आपका काम सफर कर रहा हो, या फीमेल को लगे कि वो डिस्टर्ब हो गई हैं, या अपनी वर्क प्लेस पे वो कंफर्टेबल सेफ ना फील करें, तो ये सब चीजें सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर ही आती हैं।
0: मैम एक बात बताइए, मैं इसे अलग हटकर बात कर रहा हूँ और लाइट नोट पर बात करना चाहूंगा, फिर तो मुझे लगता है कि अरे मैम आगे जैसे होता है ना कि टीचर आता है, कोई प्रोफेसर आता है, कुछ तो दोस्त आपके बहुत ज्यादा होंगे या बहुत ही लिमिटेड होंगे, कैसा है आपका अनुभव?
1: नहीं, बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। हमारे लिए काम जरूर ऐसा है, पर हम चीजों को, इट्स नॉट दैट, एक होता है ना, हम वी ट्राई टू पैसिफाई, इट्स नॉट लाइक एग्जैजरेटिंग। कुछ चीजें होती है, हमें पता है, आजकल की तो आप नॉर्मल टोन में भी आप देखेंगे बच्चों की आम भाषा ही यही हो गई है।
0: मैम ये तो आपने बहुत,
1: हम अगर हर चीज को अगर इसमें करने, क्योंकि अब्यूजिव लैंग्वेज ऑल्सो कम्स अंडर दिस सेक्सुअल हैरेसमेंट, अगर हम अब्यूजिव लैंग्वेज को देखें तो बच्चे आजकल आपस में नॉर्मल टोन में ही इसी भाषा में बात करते हैं,
0: जबकि बहुत गलत है।
1: हाँ।
0: क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक समझने की कोशिश करते हैं कि किस माहौल से आप आते हैं, किस परिवेश में आप रहते हैं, या किस तरीके से आपकी परवरिश हुई है। एक इशारा भी है कि आप गाली गलौज से अपने आप को दूर रखिए। निश्चित तौर पर आप नहीं चाहते कि आपके सामने कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे, आप नहीं चाहते कि आपके परिवार, जहां आपकी माँ हो, बहन हो, उनके सामने कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे। सो प्लीज आप अपने बारे में अलर्ट रहना चाहते हैं, तो ऐसी जब खुशनुमा माहौल आप दूसरों को देंगे तो मैं समझता हूं कि एक खुशनुमा माहौल हम क्रिएट कर पाएंगे, और उसके बाद आपकी भी एक पहचान बनती है। विकसित भारत जब हमें बनाना है तो उसमें आपका योगदान बहुत जरूरी है, एक युवा का योगदान बहुत जरूरी है। जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, तो दिल की गहराइयों से मैं मैम का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC के बारे में हम बातें कर रहे हैं, और मेरे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर एकता चौधरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC शारदा विश्वविद्यालय से। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, बातों का जो सिलसिला है लगातार जारी रहेगा। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम। मेरे यानी गगन के साथ राबता है, राबता हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास गेस्ट आप जुड़ी हुई हैं और जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आपका नाम है डॉक्टर एकता चौधरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC शारदा यूनिवर्सिटी से। मैम, ब्रेक के बाद आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: इस कमेटी से हम समझ पा रहे हैं कि महिलाओं की बातें हो रही हैं, एक लड़की की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, क्या एक पुरुष की जब हम बात करते हैं तो उसके भी कुछ राइट्स हैं? वो कैसे अपने आप को बचाव कर पाए कि उसके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? कभी कभी झूठे केसेस भी आपके सामने आ जाते होंगे, तो मैं इसी बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा। तो किस तरीके से, अगर मतलब बात वही आ रही है कि कंप्लेन को आगे लेकर जाए और अगर झूठा केस आ रहा है तो कैसे उस वक्त आप जजमेंट कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है?
1: एकदम सही बात है गगन जी। इस केस को जैसे आपने बताया है कि कभी कभी गलत कंप्लेन्स भी आती हैं, उसके ऊपर भी लॉ है। इट्स नॉट दैट कि मेल्स डोंट हैव एनी राइट। आदमियों के लिए भी होता है कि कई बार अगर किसी ने गलत कंप्लेन कर दी है और अगर बिल्कुल प्रूफ के साथ एंड इट इज प्रूवन, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रूफ करना, क्योंकि इस केस में सारे जो फैक्ट्स हैं या प्रूफ्स हैं वो रेस्ट्रेंट पार्टी को देनी पड़ता है। पर अगर ऐसा कुछ लगता है कि गलत कंप्लेन आई है एंड वी फाइंड ऑल गेट ऑल द प्रूफ, तो उस केस में वी कैन ऑलवेज हैव अ पनिशमेंट फॉर अ कंप्लेनेंट एज वेल। सो इट गोज एज अ
0: जो शिकायत कर रहा है, अगर उसका गलत पाएगी तो उसको दंड का अधिकारी है।
1: इट्स अ मैलफिस कंप्लेन, सो इट गोज एज अ फॉल्स एलिगेशन।
0: यस,
1: तो वो उस केस में फिर हम दूसरी पार्टी को भी कर सकते हैं रेस्ट
0: पनिशमेंट कर सकते हैं। वेरी गुड। इससे पहले जो बात आती है, बात यही आती है कि मैं अपनी कंप्लेंट को कैसे दर्ज करूं, और साथ साथ मैं अब ये समझना चाहूंगा कि ये तो हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, कोई फैकल्टी है तो उसके भी ये राइट्स उसी ICC में ही आते हैं?
1: एकदम बिल्कुल, फैकल्टी के और स्टूडेंट्स के, कोई भी जो भी फीमेल स्टाफ हो या स्टूडेंट हो, कोई भी फीमेल उस वर्क प्लेस के अंदर है, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, किसी भी तरीके का एम्प्लॉय हो और कोई भी स्टूडेंट हो, सब ICC के।
0: मैम, आपसे मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है, मैं बहुत अलर्ट रहने वाला हूँ इसके बाद, क्योंकि रेडियो इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री ऐसी है कि आप लोगों को देखेंगे, बातचीत करेंगे, उनके बारे में आप बोलेंगे, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि नहीं बेटा गगन, अलर्ट हो जाना, पता नहीं कब कौन कोई बात को दिल पे लेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन खैर, ये आपको आना चाहिए, एक कला है कि आप कब कहाँ कैसे बात कर रहे हैं। अगर ये सब नहीं आता तो आप सीखिए समझिए, क्योंकि अगर आप सीखेंगे समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाएंगे। और सच बात तो ये कि आप इज्जत चाहते हैं अपनी फैमिली की, फिर से मैं वही शब्दों को दोहराऊंगा, तो जब आप इज्जत सम्मान दूसरी महिलाओं को आप देंगे, अपने कुलीग को देंगे, तो निश्चित तौर पर फिर वही बात कि खुशनुमा माहौल आप बनाकर रख पाएंगे। तो मैम, आपकी पसंद का कोई गाना हो जो आप सुनना चाहती हो, सुनाना चाहती हो हमारे लिसनर्स को, क्योंकि ये बहुत एक गंभीर विषय है लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत हल्के फुल्के अंदाज में हम इसको आगे लेकर चले, तो कोई गाना जो आप सुनना या सुनाना चाहती हो?
1: अपने आप से प्ले,
0: आप अपने आप से। चलिए, मुस्कुराहट भरा एक खूबसूरत गाना मैं आपके लिए प्ले करना चाहता हूँ, मुस्कुराने की वजह तुम हो। सच बात तो ये कि मुस्कुराने की वजह आप यानी कि हमारे लिसनर्स हैं, क्योंकि आपको देखकर ही हमें एक एनर्जी मिलती है। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत हम राब्ता कर रहे हैं और राब्ता इस प्रोग्राम का नाम है। हमारे साथ जुड़ी हुई है इंटरनल कम्प्लेंट कमेटी यानी ICC की प्रेसाइडिंग ऑफिसर आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी से। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। सोलिसिटर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉलेज वर्कशॉप के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए और रेडियो वार्ता के माध्यम से स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, सभी को अलर्ट करता है कि हमारे राइट्स क्या हैं। ये कमेटी किस तरीके से काम करती है, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो कहां हम जाएं, कैसे अपने ऑफिसर से हम मिलें, कैसे अपनी बात को हम उन तक लेकर जाएं और कैसे कभी कभी ऑनलाइन कंप्लेंट को दर्ज करें। तो इसी संबंध में मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आपसे कोई कनेक्ट करे, कंप्लेंट दर्ज करे, या आपका ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर या आपका ऑफिस नंबर कौन सा ब्लॉक है जहां आप लोग, ये हमारा ऑफिस है।
1: अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को जरूरत पड़ती है बाय चांस कभी हमारे पास आने की या कंप्लेन करने की, तो इसके कुछ है कि अगर आपको लगता है आप स्कूल लेवल पे पहले अपने हेड को बोल सकते हैं
0: जी,
1: या आप हॉस्टल लेवल पे वार्डन्स को बोल सकते हैं और उनको लगता है कि वो हमारे को फॉरवर्ड कर दें अगर कंप्लेन सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड है तो वो हमारे पास पहुंच जाती है। या फिर जो कंप्लेनेंट है वो डायरेक्टली ICC को भी आके कंप्लेन कर सकता है।
0: ओके।
1: तो ये कंप्लेन जो है किसी भी इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए। 3 महीने पहले तक इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर विद इन 3 मंथ्स कंप्लेन कर सकते हैं। पर उसके में भी है आपके पास कि अगर आप इनकेस नहीं भी कर पाते हैं और उसके बाद भी करना चाहते हैं तो आफ्टर लुकिंग आफ्टर द फैक्ट एंड अ वैलिड रीजन दिस डेडलाइन ऑल्सो कैन बी एक्सटेंडेड। तो आप 3 महीने के बाद भी कर सकते हैं अगर ICC कमेटी को लगता है कि नहीं बहुत वैलिड रीजन है आपका
0: जी।
1: तो आप उसके बाद भी हम कंप्लेंट ले लेते हैं। फिर ICC अपने लेवल पे इंक्वायरी करती है, एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाती है। अगर स्क्रीनिंग कमेटी में उनको लगता है कि कंसीलिएशन या कुछ बातचीत से बात हो सकती है तो हम उस तरीके से उसको लेके जाते हैं। अगर मैटर बहुत ज्यादा है, सीरियस है, और फिर हम पूरी इंक्वायरी कमेटी, पूरी ICC की कमेटी बैठती है, देन फॉर्मल इंक्वायरी कंडक्ट होती है। फिर उसके बाद हम अपनी जो भी हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं या आफ्टर द फाइनल इंक्वायरी देन इट गोज टू द VC ऑफिस फॉर द अप्रूवल। देन आफ्टर द रिकमेंडेशन देन द पनिशमेंट इज डिसाइडेड ऑन दोज रिकमेंडेशंस एंड देन द ऑफिस ऑर्डर्स आर इशूड फ्रॉम द हायर अथॉरिटी।
0: इस प्रोसेस को कितना समय लग जाता है मैम?
1: वी एक्चुअली हैव अ डेडलाइन ऑफ 90 डेज। हमें किसी भी इंक्वायरी को करने के लिए वैसे 90 डेज होते हैं, बट वी ट्राई टू काइंड ऑफ गिव जस्टिस या हम किसी भी एक नतीजे पे कोशिश करते हैं कि हम 20 दिन, 15 से 20 दिन में आ जाए।
0: Okay.
1: थोड़ा सा ताकि, और इस अगर कुछ ज्यादा होता है तो उस बीच में हम एक रेस्ट्रेन ऑर्डर सा इशू कर देते हैं जो भी रिस्पोंडेंट होता है उसके लिए।
0: क्या कभी ऐसा होता है कि, या ये एक प्रावधान है कि कोई चाहता है कि उसकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो रिवील ना हो, ऐसा होता है?
1: ICC के जितने भी मैटर्स होते हैं, जो भी ऐसा कुछ होता है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होता है। कभी भी किसी कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी अपनी ICC की तरफ से कभी भी रिवील नहीं होती है, कहीं पे भी नहीं जाती। हम जब कभी भी कंप्लेन भी भेजते हैं या UGC में जब हम डेटा भी भेजते हैं तो उसमें भी सारा मास्ट होता है। कंप्लेनेंट का नाम और रिस्पोंडेंट का नाम कहीं जिक्र नहीं होता। इट इज ओनली द ऑर्डर नंबर या केस नंबर के नाम से। तो इट इज एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल।
0: ठीक है मैम, कोई ईमेल आईडी जो आप यहाँ जिक्र करना चाहें, कोई ब्लॉक जहाँ ये ऑफिस है?
1: ICC पे अगर कंप्लेन आप डायरेक्ट डालते हैं, वैसे शारदा यूनिवर्सिटी में ग्रीवेंस पोर्टल है, एक ग्रीवेंस पोर्टल के अंदर भी ICC प्लेटफॉर्म है, तो आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं। नहीं तो ICC की एक मेल है icc@sharda.ac.in, तो डायरेक्टली कंप्लेन आप उसमें भी भेज सकते हैं।
0: ठीक है,
1: जिसमें मोस्टली वही उसी के थ्रू ज्यादा आती है। और फिर जो इसका ऑफिस है, अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ऑफिस है ICC का, दैट्स इन डेंटल बिल्डिंग, सेकेंड फ्लोर, रूम नंबर 5।
0: ग्रेट। फाइनली मैम, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, बहुत सारे केसेस आप देखती हैं, जानती हैं, समझती हैं, तो मैं फाइनली एक संदेश आपसे लेना चाहता हूं अपने लिसनर्स के लिए। एक तरफ तो ये काम हो रहा होता है और जो मोरल बातें हैं उनको भी कहीं ना कहीं लोग याद रखें, तो एक मैसेज क्या होगा कि किस तरीके से ये कंप्लेंट्स कम हों, यहाँ तक लोग ना पहुँचें? हाँ, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो लिसनर्स, नो डाउट कि आपको पहुँचने की बहुत ज़रूरत है। मेरा मानना तो ये है कि ये बातें हम जानते हैं, समझते हैं कि बड़ों का अदब करिए, अपने साथी बुद्धि का ख्याल रखिए, किसी से ऊंची आवाज में बात ना करिए, और जिस तरीके से मैंने कहा कि आप अपनी फैमिली का एक सम्मान रिस्पेक्ट चाहते हैं, जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो मैं समझता हूँ कि नेचर भी आपके साथ कहीं कुछ गलत होने नहीं देगी। ये मेरा मानना सोचना है। तो मैम फाइनली आपकी तरफ से क्या मैसेज आता है?
1: Actually, there should be zero tolerance for sexual harassment. It is the shared responsibility of all. अगर हम सब मिलके इस चीज को समझेंगे तो कहीं पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें इस तरीके से आएंगी ही नहीं। अगर हम आपस में ही जो एक जेंडर कम्युनिकेशन गैप है ना, उसको अगर हम फिल कर पाएं, वो बहुत जरूरी है। आप हम सोचें कि सब लोगों से हम अपनी तरीके से ही बात कर सकेंगे, सेम जेंडर हमारी चीज को उसी तरीके से एक्सेप्ट करेगा या अब्सॉर्ब करेगा, वो गलत है। अगर हम एक लेवल पे आके उनको भी समझें और उनके तरीके से बात रखें, जैसे कि सीनियर जूनियर एम्प्लॉयज में बहुत होता है,
0: जी जी,
1: सीनियर एम्प्लॉय है जूनियर है, फीमेल्स प्रॉब्ली अगर आप थोड़ा सा शाउट करते हैं नहीं एक्सेप्ट कर पाती हैं, तो अगर आप वो एक जेंडर गैप को समझेंगे ना तो आप उनको उसी तरीके से हैंडल करेंगे। और जब एक चीज ये चीज आपको आ जाएगी, बिकॉज हर चीज हर तरीके का कम्युनिकेशन सेम नहीं हो सकता, मेल्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, फीमेल्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, तो वो थोड़ा सा वो चीज को हम वर्क प्लेस में अगर अपना ले आए तो ये यहाँ पे खत्म।
0: वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि लिसनर्स, मैंने एक इशारा कर दिया है, नेक्स्ट टाइम ऐसी कुछ हम वर्कशॉप रखने वाले हैं मैम, और आप जरूर रखिएगा वर्कशॉप, और थैंक्स मुझे जरूर बोलेगा, गगन ने मुझे ये इशारा कर दिया कि जल्दी इस पर हम वर्कशॉप करेंगे ही करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि बड़े से बड़े मसले हल हो जाते हैं बात करने से, बात बनती है। मैम का इशारा यही है कि जो कहीं गैप आ रहा है, और आप अपने साथी को जानिए, समझिए उसे क्या अच्छा लगता है। जैसे आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं ना कि मेरा वो दोस्त है वो ये खाता है ये पीता है, उसको छोटी छोटी बातें अच्छी लगती है, छोटी छोटी बात वो नाराज हो जाता है, खफा हो जाता है, पसंद नापसंद का ख्याल रखेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। वक्त का इशारा मुझे कह रहा है कि मैं आपसे अनुमति लूं, तो बस यही कहूंगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। और मेरा फंडा यही है, अगर मैं इस बात का एक समअप करूं या निष्कर्ष निकालूं कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का, ये मेरा मंत्र है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग टेंशन कहते ना कि लेने का नहीं देने का, नहीं, हम कहते हैं कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सो लिसनर्स, आप थी हमारे साथ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप ICC से डॉक्टर एकता चौधरी। ये वार्ता, ये टॉक आपको कैसी लगी, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं, और जब भी आपको लगे कि शारदा यूनिवर्सिटी के रेडियो FM जाना है तो मुलाकात कर सकते हैं। वक्त का इशारा, मैं हो रहा हूं 9:11, अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। टाटा, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।

0: राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन, आपके साथ वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं एक खास प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है कम्युनिटी कनेक्ट। और इसके अंतर्गत हमने एक प्रोग्राम को नाम दिया है राब्ता, यानी कि हम एक खास मेहमान से राब्ता करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वो अपने एक सब्जेक्ट के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं या जुड़ती हैं। जहां आप काम कर रहे होते हैं किसी भी संस्थान में, तो जाहिर सी बात है कि आप चाहते हैं बड़ा खुशनुमा माहौल रहे। अगर कहीं कोई दिक्कत या परेशानी आ जाती है तो सच बात तो यह है कि एक कमेटी होती है और कमेटी से जुड़े हुए लोग भी होते हैं। वो कमेटी क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है, इसी सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आज मेरे साथ एक खास गेस्ट आप जुड़ रही हैं। आप हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की प्रिसाइडिंग ऑफिसर डॉक्टर एकता चौधरी। मैम सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मिस्टर गगन, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: मैम सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, जो हमने जिक्र किया ICC, ये है क्या?
1: इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो बनाई गई थी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट के तहत, जो कि 2013 में लागू हुआ था, जिसको हम सब पॉश या GS कैश के नाम से भी जानते हैं। फिर 2017 में द नेम वाज फॉर्मुलेटेड एंड गिवन एज ICC, दैट इज इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। इसका जो मेन एजेंडा है वो है प्रोवाइड सेफ एंड कॉन्फिडेंशियल एंड फेयर सिस्टम जो सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड इश्यूज एट वर्कप्लेस को हैंडल करे।
0: जी सोलिसिटर्स, मैं समझता हूँ कि इस बात को आप जान गए हैं, समझ गए हैं। हर कोई यही चाहता है कि अगर आप जिस जगह काम कर रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो, लेकिन जब कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आपको आपके राइट्स पता होना बहुत जरूरी है कि अगर परेशानी है तो इस परेशानी का हल कहाँ हो सकता है, किसके पास जाकर हो सकता है, क्या कोई इस तरीके की बॉडी बनी हुई है जहां हम अपनी बात रख पाए, कह पाए। तो मैम ने इसके बारे में अपनी बात रख दी। तो मैम जब आगे बढ़ता हूँ तो बात निकल कर ये सामने आती है कि ये जो कमेटी है किस तरीके से काम करती है।
1: जो ICC कमेटी है इसमें जैसे कि पहले बताया हम मैंने कि इट वर्क्स ऑन प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल ऑफ एनी कंप्लेंट। सो तो इसमें एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है हु इज अ सीनियर वुमेन एम्प्लॉई, और एटलीस्ट दो मेंबर्स होते हैं जो फैकल्टी टीचिंग मेंबर्स होते हैं, दो नॉन टीचिंग मेंबर्स होते हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है एक एक्सटर्नल मेंबर होता है जो कि किसी NGO से या जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या फीमेल की लिए काम करता हो। और इसमें फिर तीन स्टूडेंट मेंबर्स भी होते हैं जिसमें कि एक ग्रेजुएट होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएट होता है और एक रिसर्च स्कॉलर होता है।
0: जब आप स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं तो उनका जो बायोडाटा है तो वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं या

0: कि लॉ के ही होना जरूरी है या स्कूल ऑफ मीडिया के होना जरूरी है या डेंटल का होना जरूरी है या किसी भी फील्ड से आ सकते हैं वो?
1: नहीं, स्टूडेंट जो है वो किसी भी फील्ड से आ सकते हैं, पर उनका एक झुकाव और एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो इस क्षेत्र में कुछ काम करना या कुछ अपना योगदान देना चाहें। उस तरीके से हम स्टूडेंट का
0: इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। सो लिसनर्स, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है सिर्फ और सिर्फ सुरशाद 90.8 एफएम पर। So don't go anywhere, stay tuned on your Surshada 90.8 FM.

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। कम्युनिटी कनेक्ट के प्रोग्राम के तहत हम राबता कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ी हुई हैं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी, जो कि इस फील्ड की जानकार हैं, बहुत सीनियर हैं। और ये किस तरीके से काम करती है ये कमेटी, इसके बारे में हम मैम से जान रहे हैं। तो मैम, ब्रेक के इस पार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू गगन जी।
0: ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना कि ये कमेटी क्या है, किस तरीके से काम करती है। आपने हमें बताया कि इसमें कई लोग जुड़े होते हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे कि आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है, उस अनुभव के साथ आप आते हैं। स्टूडेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं, लेकिन एक जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है कि वो उस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं या यूं कहें कि अपने अधिकारों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो मैं जो स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि क्या वाकई उनका इंटरेस्ट होता है या नहीं होता।
1: स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होता है, पर यूजुअली जो केसेस हम सोच समझ के स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जैसे कि अगर स्टूडेंट का कोई कंप्लेन आती है तो हम स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं। पर यदि अगर कोई सीनियर फैकल्टी की या फैकल्टी हो तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ना रखा जाए। क्योंकि उसमें उस केस में ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं और कुछ लेवल ऐसे होते हैं जिसमें कि चीज़ें कई बार गलत साबित होती हैं। उस केस में हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए। पर अदरवाइज वो किसी भी फील्ड का कोई भी स्टूडेंट जो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो और जिस जो कमिटेड हो वुमेन्स राइट के लिए हेल्प करने के लिए, उन स्टूडेंट्स को हम एनरोल करते हैं।
0: यानी कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा। अब मैं आपसे ये जानना समझना चाहता हूँ कि जब हम स्टूडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कभी कभी झूठी बातें भी आपके सामने आती होंगी, तो उस समय आप कैसे उसको समझ पाती हैं कि ये गलत बात है, इसको हम यहाँ रोक सकते हैं, आपने झूठी बात रखी है। या कभी कभी कोई रिटर्न में आ जाती है, जैसे आप ऑफिस हमें बता रही थी कि अगर बात आगे तक बढ़ जाती तो जाहिर सी बात है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट सभी का हो जाता है, एचआर होता है, आपका एक अलग भूमिका होती है, कभी कभी पुलिस या लॉ के अधिकारी भी जुड़ जाते हैं। तो वो क्या सीन होता है, किस तरीके से कंप्लेंट को आप लोग लेते हैं, हैंडल करते हैं?
1: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गगन जी, ये बहुत ही आम सी बात है। ऐसे किस को बहुत सारे केसेस में होता है कि बच्चे को एक बार पहली बार में समझ नहीं आता कि वो एक्चुअली किस तरीके से और कहाँ तक कंप्लेंट ले जाना चाहता है। तो एक इसमें ICC में एक है गाइडलाइंस में कि देर इज अ वे टू फॉर अ कंसिलिएशन ऑल्सो। तो उस केस में हम स्क्रीनिंग कमिटी बनाते हैं पहले और दोनों पार्टीज को सुनते हैं, द कंप्लेनेंट एज वेल एज द रेस्ट्रेंट। तो उसमें ये होता है कि अगर हमें लगता है कि दोनों पार्टी आपस में सुलह करने के लिए तैयार हो जाती हैं, कई बार उनको समझ आ जाता है हमारी बात से ही या समझाने से, और उनको आपस में भी लगता है कि हमें आगे फर्दर कंप्लेन को बढ़ाने की या उस चीज को ले जाने की जरूरत नहीं है इतने सीरियस नोट पे,
0: जी,
1: तो वो कंसीलिएशन के थ्रू उस कंप्लेन को वहीं की वहीं हम खत्म भी कर सकते हैं। पर अगर मैटर बहुत सीरियस होता है और हमें खुद लगता है तो हम उसको फिर आगे स्टेज ले जाते हैं।
0: ये तो रही एक बात, दूसरे पहलू को अगर मैं जानूं तो क्या आपने लोगों को दोस्त बनते हुए देखा है, अरे यार मैं नादान था, गलती कर गया, किसी ने मुझे उकसा दिया इस बात के लिए तो ये कंप्लेंट मैं लेकर आ गया या दर्ज करा दी?
1: हाँ, ऐसा भी होता है। पर क्योंकि ये एक्चुअली केसेस जो होते हैं ICC में सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड ही आते हैं,
0: जी,
1: तो उस केस में ये है कि हम बहुत किसी भी चीज को ना नजरअंदाज या आप कहें कि हम उसको सीरियसली ना लें, वो नहीं हो पाता। पर कभी कभी कुछ केसेस में होता है कि बच्चे नादानी में थोड़ा सा चीज को सीरियस नोट पे ले जाके उसको बढ़ावा देने के लिए या किसी को डराना भी हो थोड़ा बहुत,
0: जी जी,
1: तो आके कंप्लेन कर देते हैं। पर उस केस में हमारी कोशिश यही रहती है कि फिर दोनों पार्टीज को थोड़ा थोड़ा समझाया जाए और बताया जाए कि ऐसे चीजें ना ले जाके आप उसको ठीक नोट पे भी एंड कर सकते हैं।
0: बहुत खूबसूरत। सोलिसिटर्स कहने का मतलब ये कि इन बातों को जानना समझना बहुत जरूरी है। एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एकता चौधरी से, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं ICC कमेटी शारदा विश्वविद्यालय से, और बहुत बड़े अनुभव के साथ मैम आती हैं और किस तरीके से ये कमेटी काम करती है, तो ये जानना समझना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बातों का जो सिलसिला है लगातार हम उसको कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जब हम जिक्र करते हैं तो समुदाय की बातें होती हैं, आपकी बातें, हमारी बातें, और हर एक सब्जेक्ट पर हम यहां से बातें कर रहे होते हैं। आज ज्ञान विज्ञान की बातों के अलावा, पढ़ने पढ़ाने की बातों के अलावा, जिस सब्जेक्ट को हमने चुना है कॉलेज के समय में, ये जानना समझना बहुत जरूरी है जहां आप काम कर रहे हैं कि एक महिला के अधिकार क्या हैं। जब आप जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप अपनी बात को आगे लेकर जा पाते हैं और उसके बाद एक खुशनुमा माहौल आप महसूस करते हैं कि हाँ, ये वर्किंग प्लेस बहुत अच्छा है। और इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। जी हाँ, शारदा यूनिवर्सिटी में स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं और अच्छा माहौल यहाँ है, और यही वजह कि दूर दराज से स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन जाने अनजाने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है कि अपनी बात को हम आगे लेकर कहां जाएं। उस समय एक कमेटी काम करती है जिसका नाम है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। उसकी प्रेसाइडिंग ऑफिसर आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी मैम, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये रूपरेखा बनानी पड़ती है, बहुत ज्यादा मैं बोल गया। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो क्या बात है, वो क्या आधार है जिसकी वजह से कंप्लेंट आपके सामने आती है। जैसे कि अमूमन मैं समझना चाहूंगा आपसे, या तो मैं ऊंचा सुर आपको लगा गया, या मैंने आपकी शान में और कुछ गुस्ताखी कर दी, या कुछ और। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वो कंप्लेंट कौन कौन सी हो सकती है, ताकि जो लिसनर्स हैं वो अलर्ट रहें, स्टूडेंट्स भी अलर्ट रहें, या एक एम्प्लॉय भी अलर्ट रहे।
1: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है गगन जी, इससे क्योंकि लोगों को कई बार बहुत चीजों को लेके गलत फहमी होती है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के तहत या ICC के अंदर एक्चुअली क्या चीजें आती हैं जिसपे हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है ना, सिर्फ फिजिकल हैरेसमेंट को ही नहीं माना जाता है कि आपने फिजिकली किसी के साथ कुछ गलत किया है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट में आएगा, नहीं। और बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप अनवेलकम कोई फिजिकल एडवांसमेंट भी दिखाते हैं, या कोई रिक्वेस्ट या कोई एक्स्ट्रा फेवर्स भी किसी से मांगते हैं, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। और पासिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स,
0: जी,
1: आप अगर किसी को सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स भी करते हैं, पीछे से कमेंट मार रहे हैं, या पीछे से उसको अनवेलकम जेस्चर दे रहे हैं, या इशारों में भी कुछ बोल रहे हैं, कोई आपका कैसा भी अनवेलकम कंडक्ट जो दूसरे किसी को अच्छा ना लगे, फीमेल्स उसको ना पॉजिटिवली लें, आपका चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो या फिजिकल हो, जिसको कि वो ठीक ना उनको लगे, उनको अनकम्फर्टेबल महसूस कराए, तो जिसकी वजह से आपका काम सफर कर रहा हो, या फीमेल को लगे कि वो डिस्टर्ब हो गई हैं, या अपनी वर्क प्लेस पे वो कंफर्टेबल सेफ ना फील करें, तो ये सब चीजें सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर ही आती हैं।
0: मैम एक बात बताइए, मैं इसे अलग हटकर बात कर रहा हूँ और लाइट नोट पर बात करना चाहूंगा, फिर तो मुझे लगता है कि अरे मैम आगे जैसे होता है ना कि टीचर आता है, कोई प्रोफेसर आता है, कुछ तो दोस्त आपके बहुत ज्यादा होंगे या बहुत ही लिमिटेड होंगे, कैसा है आपका अनुभव?
1: नहीं नहीं, बहुत पॉजिटिवली लेते हैं हमारे लिए काम जरूर ऐसा है, पर हम चीजों को, इट्स नॉट दैट, एक होता है ना, हम वी ट्राई टू पैसिफाई, इट्स नॉट लाइक एग्जैजरेटिंग। कुछ चीजें होती है, हमें पता है, आजकल की तो आप नॉर्मल टोन में भी आप देखेंगे बच्चों की आम भाषा ही यही हो गई है।
0: मैम ये तो आपने बहुत,
1: हम अगर हर चीज को अगर इसमें करने, क्योंकि अब्यूजिव लैंग्वेज ऑल्सो कम्स अंडर दिस सेक्सुअल हैरेसमेंट, अगर हम अब्यूजिव लैंग्वेज को देखें तो बच्चे आजकल आपस में नॉर्मल टोन में ही इसी भाषा में बात करते,
0: जबकि बहुत गलत है।
1: हाँ।
0: क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक समझने की कोशिश करते हैं कि किस माहौल से आप आते हैं, किस परिवेश में आप रहते हैं, या किस तरीके से आपकी परवरिश हुई है। एक इशारा भी है कि आप गाली गलौज से अपने आप को दूर रखें। निश्चित तौर पर आप नहीं चाहते कि आपके सामने कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे, आप नहीं चाहते कि आपके परिवार, जहां आपकी माँ हो, बहन हो, उनके सामने कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे। सो प्लीज आप अपने बारे में अलर्ट रहना चाहते हैं, तो ऐसी जब खुशनुमा माहौल आप दूसरों को देंगे तो मैं समझता हूं कि एक खुशनुमा माहौल हम क्रिएट कर पाएंगे, और उसके बाद आपकी भी एक पहचान बनती है। विकसित भारत जब हमें बनाना है तो उसमें आपका योगदान बहुत जरूरी है, एक युवा का योगदान बहुत जरूरी है। जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, तो दिल की गहराइयों से मैं मैम का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC के बारे में हम बातें कर रहे हैं, और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर एकता चौधरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC शारदा विश्वविद्यालय से। यहां पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, बातों का जो सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी कनेक्ट प्रोग्राम। मेरे यानी गगन के साथ राबता है, राबता हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास गेस्ट आप जुड़ी हुई हैं और जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आपका नाम है डॉक्टर एकता चौधरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ICC शारदा यूनिवर्सिटी से। मैम, ब्रेक के बाद आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: इस कमेटी से हम समझ पा रहे हैं कि महिलाओं की बातें हो रही हैं, एक लड़की की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। क्या एक पुरुष की जब हम बात करते हैं तो उसके भी कुछ राइट्स हैं? वो कैसे अपने आप को बचाव कर पाए कि उसके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? कभी कभी झूठे केसेस भी आपके सामने आ जाते होंगे, तो मैं इसी बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा। तो किस तरीके से, अगर मतलब बात वही आ रही है कि कंप्लेंट को आगे लेकर जाए और अगर झूठा केस आ रहा है तो कैसे उस वक्त आप जजमेंट कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है?
1: एकदम सही बात है गगन जी। इस केस को जैसे आपने बताया है कि कभी कभी गलत कंप्लेंट्स भी आती हैं, उसके ऊपर भी लॉ है। इट्स नॉट दैट कि मेल्स डोंट हैव एनी राइट। आदमियों के लिए भी होता है कि कई बार अगर किसी ने गलत कंप्लेन कर दी है और अगर बिल्कुल प्रूफ्स के साथ एंड इट इज प्रूवन, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रूफ करना, क्योंकि इस केस में सारे जो फैक्ट्स हैं या प्रूफ्स हैं वो रेस्ट्रेन पार्टी को देनी पड़ता है। पर अगर ऐसा कुछ लगता है कि गलत कंप्लेन आई है एंड वी फाइंड ऑल गेट ऑल द प्रूफ, तो उस केस में वी कैन ऑलवेज हैव अ पनिशमेंट फॉर अ कंप्लेनेंट एज वेल। सो इट गोज एज अ
0: जो शिकायत कर रहा है, अगर उसका गलत पाएगी तो उसको दंड का अधिकारी है।
1: इट्स अ मैलफिस कंप्लेंट, सो इट गोज एज अ फॉल्स एलिगेशन।
0: यस,
1: तो वो उस केस में फिर हम दूसरी पार्टी को भी कर सकते हैं
0: पनिशमेंट कर सकते हैं। वेरी गुड। इससे पहले जो बात आती है, बात यही आती है कि मैं अपनी कंप्लेंट को कैसे दर्ज करूं, और साथ साथ मैं अब ये समझना चाहूंगा कि ये तो हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, कोई फैकल्टी है तो उसके भी ये राइट्स उसी ICC में ही आते हैं?
1: एकदम बिल्कुल, फैकल्टी के और स्टूडेंट्स के, कोई भी जो भी फीमेल स्टाफ हो या स्टूडेंट हो, कोई भी फीमेल उस वर्क प्लेस के अंदर है, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, किसी भी तरीके का एम्प्लॉय हो और कोई भी स्टूडेंट हो, सब ICC के।
0: मैम, आपसे मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है, मैं बहुत अलर्ट रहने वाला हूँ इसके बाद, क्योंकि रेडियो इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री ऐसी है कि आप लोगों को देखेंगे, बातचीत करेंगे, उनके बारे में आप बोलेंगे, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि नहीं बेटा गगन, अलर्ट हो जाना, पता नहीं कब कौन कोई बात को दिल पे लेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती है। लेकिन खैर, ये आपको आना चाहिए कि कला है कि आप कब कहां कैसे बात कर रहे हैं। अगर ये सब नहीं आता तो आप सीखिए समझिए, क्योंकि अगर आप सीखेंगे समझेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लग जाएंगे। और सच बात तो ये कि आप इज्जत चाहते हैं अपनी फैमिली की, फिर से मैं वही शब्दों को दोहराऊंगा, तो जब आप इज्जत सम्मान दूसरी महिलाओं को आप देंगे, अपने कुलीग को देंगे, तो निश्चित तौर पर फिर वही बात कि खुशनुमा माहौल आप बनाकर रख पाएंगे। तो मैम, आपके पसंद का कोई गाना हो जो आप सुनना चाहती हो, सुनाना चाहती हो हमारे लिसनर्स को, क्योंकि ये बहुत एक गंभीर विषय है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत हल्के फुल्के अंदाज में हम इसको आगे लेकर चले, तो कोई गाना जो आप सुनना या सुनाना चाहती हो?
1: अपने आप से प्ले,
0: आप अपने आप से। चलिए, मुस्कुराहट भरा एक खूबसूरत गाना मैं आपके लिए प्ले करना चाहता हूँ, मुस्कुराने की वजह तुम हो। सच बात तो ये कि मुस्कुराने की वजह आप यानी कि हमारे लिसनर्स हैं, क्योंकि आपको देखकर ही हमें एक एनर्जी मिलती है। वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: पर फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम के तहत हम राब्ता कर रहे हैं, और राब्ता इस प्रोग्राम का नाम है, हमारे साथ जुड़ी हुई है इंटरनल कम्प्लेंट कमेटी यानी ICC की प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप हैं डॉक्टर एकता चौधरी फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी से। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। सो लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉलेज वर्कशॉप के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए और रेडियो वार्ता के माध्यम से स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, सभी को अलर्ट करता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, ये कमेटी किस तरीके से काम करती है, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो कहां हम जाएं, कैसे अपने ऑफिसर से हम मिलें, कैसे अपनी बात को हम उन तक लेकर जाएं, और कैसे कभी कभी ऑनलाइन कंप्लेंट को दर्ज करें। तो इसी संबंध में मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसे आपसे कोई कनेक्ट करे, कंप्लेंट दर्ज करे, या आपका ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर या आपका ऑफिस नंबर कौन सा ब्लॉक है जहां आप लोग, ये हमारा ऑफिस है।
1: अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को जरूरत पड़ती है बाई चांस कभी हमारे पास आने की या कंप्लेन करने की, तो इसके कुछ है कि अगर आपको लगता है आप स्कूल लेवल पे पहले अपने हेड को बोल सकते हैं
0: जी,
1: या आप हॉस्टल लेवल पे वार्डन्स को बोल सकते हैं और उनको लगता है कि वो हमारे को फॉरवर्ड कर दें अगर कंप्लेन सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड है तो वो हमारे पास पहुंच जाती है, या फिर जो कंप्लेनेंट है वो डायरेक्टली ICC को भी आके कंप्लेन कर सकता
0: है। ओके।
1: तो ये कंप्लेन जो है किसी भी इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए, 3 महीने पहले तक इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर विद इन 3 मंथ्स कंप्लेन कर सकते हैं। पर उसके में भी है आपके पास कि अगर आप इनकेस नहीं भी कर पाते हैं और उसके बाद भी करना चाहते हैं तो आफ्टर लुकिंग आफ्टर द फैक्ट एंड अ वैलिड रीजन दिस डेडलाइन ऑल्सो कैन बी एक्सटेंडेड। तो आप 3 महीने के बाद भी कर सकते हैं अगर ICC कमेटी को लगता है कि नहीं बहुत वैलिड रीजन है आपका
0: जी,
1: तो आप उसके बाद भी हम कंप्लेंट ले लेते हैं। फिर ICC अपने लेवल पे इंक्वायरी करती है, एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाती है। अगर स्क्रीनिंग कमेटी में उनको लगता है कि कंसीलिएशन या कुछ बातचीत से बात हो सकती है तो हम उस तरीके से उसको लेके जाते हैं। अगर मैटर बहुत ज्यादा है, सीरियस है, और फिर हम पूरी इंक्वायरी कमेटी, पूरी ICC की कमेटी बैठती है, देन फॉर्मल इंक्वायरी कंडक्ट होती है। फिर उसके बाद हम अपनी जो भी हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं या आफ्टर द फाइनल इंक्वायरी देन इट गोज टू द VC ऑफिस फॉर द अप्रूवल।
0: ओके।
1: देन आफ्टर द रिकमेंडेशन देन द

0: ऐसा कुछ होता है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होता है. कभी भी किसी कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी अपनी आईसीसी की तरफ से कभी भी रिवील नहीं होती है, कहीं पे भी नहीं जाती. हम जब कभी भी कंप्लेन भी भेजते हैं या यूजीसी में जब हम डेटा भी भेजते हैं तो उसमें भी सारा मास्ट होता है. कंप्लेनेंट का नाम और रिस्पोंडेंट का नाम कहीं जिक्र नहीं होता. इट इज ओनली द ऑर्डर नंबर या केस नंबर के नाम से. तो इट इज एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल.
1: ठीक है मैम, कोई ईमेल आईडी जो आप यहाँ जिक्र करना चाहें, कोई ब्लॉक जहाँ ये ऑफिस है?
0: आईसीसी पे अगर कंप्लेन आप डायरेक्ट डालते हैं, वैसे शारदा यूनिवर्सिटी में ग्रीवेंस पोर्टल है, एक ग्रीवेंस पोर्टल के अंदर भी आईसीसी प्लेटफॉर्म है, तो आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं. नहीं तो आईसीसी की एक मेल है icc@sharda.ac.in, तो डायरेक्टली कंप्लेन आप उसमें भी भेज सकते हैं.
1: ठीक है,
0: जिसमें मोस्टली वही उसी के थ्रू ज्यादा आती है. और फिर जो इसका ऑफिस है, अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ऑफिस है आईसीसी का, दैट्स इन डेंटल बिल्डिंग, सेकेंड फ्लोर, रूम नंबर 5.
1: ग्रेट. फाइनली मैम, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, बहुत सारे केसेस आप देखती हैं, जानती हैं, समझती हैं, तो मैं फाइनली एक संदेश आपसे लेना चाहता हूं अपने लिसनर्स के लिए. एक तरफ तो ये काम हो रहा होता है और जो मोरल बातें हैं उनको भी कहीं ना कहीं लोग याद रखें, तो एक मैसेज क्या होगा कि किस तरीके से ये कंप्लेंट्स कम हो, यहाँ तक लोग ना पहुँचें? हाँ, अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो लिसनर्स, नो डाउट कि आपको पहुँचने की बहुत ज़रूरत है. मेरा मानना तो ये है कि ये बातें हम जानते हैं, समझते हैं कि बड़ों का अदब करिए, अपने साथी का ख्याल रखिए, किसी से ऊँची आवाज़ में बात ना करिए, और जिस तरीके से मैंने कहा कि आप अपनी फैमिली का एक सम्मान, रिस्पेक्ट चाहते हैं, जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो मैं समझता हूँ कि नेचर भी आपके साथ कहीं कुछ गलत होने नहीं देगी. ये मेरा मानना, सोचना है. तो मैम फाइनली आपकी तरफ से क्या मैसेज आता है?
0: एक्चुअली देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट. इट इज द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल. अगर हम सब मिलके इस चीज को समझेंगे तो कहीं पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें इस तरीके से आएंगी ही नहीं. अगर हम आपस में ही जो एक जेंडर कम्युनिकेशन गैप है ना, उसको अगर हम फिल कर पाए वो बहुत जरूरी है. आप हम सोचें कि सब लोगों से हम अपनी तरीके से ही बात कर सकेंगे, सेम जेंडर हमारी चीज को उसी तरीके से एक्सेप्ट करेगा या अब्सॉर्ब करेगा, वो गलत है. अगर हम एक लेवल पे आके उनको भी समझें और उनके तरीके से बात रखें, जैसे कि सीनियर जूनियर एम्प्लॉयज में बहुत होता है.
1: जी जी,
0: सीनियर एम्प्लॉय है, जूनियर है, फीमेल्स प्रॉब्ली अगर आप थोड़ा सा शाउट करते हैं नहीं एक्सेप्ट कर पाती हैं. तो अगर आप वो एक जेंडर गैप को समझेंगे ना, तो आप उनको उसी तरीके से हैंडल करेंगे. जब एक चीज, ये चीज आपको आ जाएगी, बिकॉज हर चीज, हर तरीके का कम्युनिकेशन सेम नहीं हो सकता. मेल्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, फीमेल्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. तो वो थोड़ा सा वो चीज को हम वर्क प्लेस में अगर अपना ले आए तो ये यहाँ पे खत्म.
1: वेरी गुड, वेरी गुड. यानी कि लिसनर्स, मैंने एक इशारा कर दिया है, नेक्स्ट टाइम ऐसी कुछ हम वर्कशॉप रखने वाले हैं मैम, और आप जरूर रखिएगा वर्कशॉप, और थैंक्स मुझे जरूर बोलेगा. गगन ने मुझे ये इशारा कर दिया कि जल्दी इस पर हम वर्कशॉप करेंगे ही करेंगे. तो मैं यही कहूंगा कि बड़े से बड़े मसले हल हो जाते हैं बात करने से, बात बनती है. मैम का इशारा यही है कि जो कहीं गैप आ रहा है, और आप अपने साथी को जानिए, समझिए उसे क्या अच्छा लगता है. जैसे आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं ना कि मेरा वो दोस्त है वो ये खाता है, ये पीता है, उसको छोटी छोटी बातें अच्छी लगती है, छोटी छोटी बात वो नाराज हो जाता है, खफा हो जाता है, पसंद नापसंद का ख्याल रखेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल हो जाएगा. वक्त का इशारा मुझे कह रहा है कि मैं आपसे अनुमति लूं, तो बस यही कहूंगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए. और मेरा फंडा यही है, अगर मैं इस बात का एक समअप करूं या निष्कर्ष निकालूं कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का, ये मेरा मंत्र है. क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग टेंशन कहते हैं ना कि लेने का नहीं देने का, नहीं, हम कहते हैं कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का. मैम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे लिसनर्स तक पहुँचाई. दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: सो लिसनर्स, आप थी हमारे साथ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप आईसीसी से, डॉक्टर एकता चौधरी. ये वार्ता, ये टॉक आपको कैसी लगी? 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा. इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं, और जब भी आपको लगे कि शारदा यूनिवर्सिटी के रेडियो FM जाना है तो मुलाकात कर सकते हैं. वक्त का इशारा, मैं हो रहा हूँ 9:11. अपना ख्याल रखिएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM. टाटा, बाय, नमस्कार, थैंक यू.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।